0: वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार? क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई?
2: न अदा।
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: सिंध में ज़रे पाणी जी खोड़ 56% ताईं पहुची वई। कोटली बैराज ते 56%, गुडू बैराज ते 30% खोड़ बरकरार। सखर बैराज ते बि पाणी जी शदीद खोड़। आबादगार सारेलो बेजो पोखण लाइ परेशान। गुडू बैराज जो मथां विकरो 75,000 ऐं हेठां विकरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज जो मथां विकरो 50,000 ऐं हेठां 18,500 क्यूसिक थी वियो। कोटली बैराज वटि मथां विकरो 11,000 क्यूसिक थी वियो। डाउन स्ट्रीम में पाणी छोड़ मुकमल तौर ते बंदि कयो वियो। सिंध में पाणी जो बहरान संगीन थियण सबब वणनि समेत ॿिया पोखियल फसल पाणी न मिलण सबब सुकण लॻा। पंजाब जी बि होड़ बरक़रार। तकरारी फ्लड केनाल ज़रिए सिंधु दरिया मां पाणी खणत जारी। कोटली डाउन स्ट्रीम में पाणी छोड़ बंदि थियण बाद दरिया में वारी उॾामण लॻी। कोटली बैराज मां निकरंदड़ वहन में पाणी घटिजी वियो। डाउन स्ट्रीम में पाणी बंदि थियण बाद इंसान तोड़े जानवर पीअण जे पाणी लाइ बि परेशान। ठठो सिजावल बदीन टंडो मोमिन खान में सूरतहाल संगीन। हैदराबाद डिवीज़न जे ॿिन्ही ज़िलनि ऐं मीरपुर ख़ास डिवीज़न में बि पाणी बहरान संगीन थी वियो। पाणी न मिलण सबब पोखियल फसल बि सुकण लॻा। मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काने डिवीज़न में बि आबादगार पाणीअ लाइ परेशान। फैज़गंज, चोट जमाली ऐं ॿियनि शहरनि में आबादगारनि जा एहतजाज। हुकूमत खां ज़री पाणी जी खोट ख़तम करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: हॉंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0300 3859।
2: अदा
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
4: आई मोहम्मद उबेर गोरी 0319-15-5-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर केल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0303 5592120
3: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े हैं बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेक बुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहुं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 and 02424601100।
5: उम्मीद के दिए जलते हैं।
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
8: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
7: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
8: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
9: 03013992836।
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-1550-724।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

मौसमियात खाते सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकन ला हीट व्यू अलर्ट जारी कर छो। सिंध के कुछ जिले में मौसम अज का 12 जून तक गर्म हों। मौसमियात खाते है सखर, शिकारपुर, कंबर, सिद्धार्थकोट के कंबाद, लाड़कानो, दादू, नवाबशाह, घोटकी, खैरपुर, नुसरफरोज जो पारो मामूल का 6 सेंटीग्रेड तक हों। मुख्तलिफ इलाकन में रात के वक्त भी गर्मी बरकरार रही। शहरी गर्मी में गैर जरूरी तौर बाहर न निकलन। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी आजाद कश्मीर की सूरतहाल से पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर जो इजलास अज शाम तलब कर वरतो। जरियन मौजूद पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी सरबराह में आजाद कश्मीर की सूरतहाल से इजलास अज इस्लामाबाद में थी। गिलगित बल्तिस्तान में कैंजी हुकूमत हूंदी। 24 तकन ते चूंड लाइ पोलिंग जो अमल जारी। इलेक्शन में 403 उम्मीदवार हिस्सो वठी रहा आहिन। पीपी जा 23, नून लीग जा 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जा 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जा 11, जेयूआई जा 8, 266 आजाद उम्मीदवार मैदान में लथल। पीपी ए नून लीग में चोटी के मुकाबले जा इम्कान। पोलिंग सुबह 8 वगे का शाम जो 5 वगे तक बिना वक्फे के जारी रही। 9,58,480 वोटर पैं वोट जो आइनी हक इस्तेमाल कंदा। आईजी गिलगित बल्तिस्तान जो चवण है सिक्योरिटी जा इंतजाम सख्त क्या वह 17,500 एहलकार सिक्योरिटी से मुकर हूं। हसास पोलिंग स्टेशन से इजाफी नफरी मुकर कई वेंदी। रेंजर्स पुलिस और बया कानून लागू कर इदारा अलर्ट हूं। पाकिस्तान की कोशिश से ईरान अमरीका गार्डन में मकबराई। ईरान के मंजमद असासन बाबत ब्रेक थ्रू थे का इम्कान। वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात बाद तेहरान पहुंची। घर वजीर सिकंदर मोमनी से मुलाकात, जंगबंदी मुआदे ए खिते सूरत हाल से गाल। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ला फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो खसूसी खत ए वजीर आजम जो पैगाम खी आया। जरियन मूजिब सदर ट्रंप ईरान से गाल मुद्दों 60 दिन रखण चाहे तो। मंजमद असासन की बहाली से भी ग। वफाकी हुकूमत के बजट से हुकूमती मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। हुकूमती वफद अज सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात कद। मुल्क की तरकियाली बजट के भी हतमी शक्ल दियण जा इम्कान। जरियन जो चवण है पीपल्स पार्टी के वफद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वडो वजीर मुराद अली शाह, श्री रहमान, नवीद कमर शामिल हूंदा। हुकूमती वफद के सरबराह नायब वजीर आजम इसाक डार कद। वफद में नाणे वारो वजीर मोहम्मद औरंगजेब बया शामिल हूंदा। वफाकी हुकूमत पारा सरकारी मुलाजमन के पगार में 10-15% तक वाद करण से गौर। नाणे वाली वजारत पगार में वाद बाबत तजवीजों वजीर आजम के मोकले छो। जरियन चवण है नाणे वाली वजीर मोहम्मद औरंगजेब वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी मुलाजमन के पगार में 10-15% तक वाद करण की तजवीज डी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी मुलाजमन के पगार में वाद जो फैसलो इतादन से मुशावरत बाद कद। सिंध में जरई पानी की खोट 56% तक पहुंची पी। कोटी बैराज से 56% गुडू बैराज से 30% खोट बरकरार। सखर बैराज से भी पानी की शदीद खोट। आबादगार सारेलो बेजो पोखण लाइ परेशान। गुडू बैराज जो मथाओं वेकरो 75,000 हेठाओं वेकरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज जो मथाओं वेकरो 50,000 हेठाओं वेकरो 18,500 क्यूसिक थी पो। कोटली बैराज वट मथाओं वेकरो 11,000 क्यूसिक थी पो। डाउन स्ट्रीम पानी छोड़ मुकम्मल तौर से बंद किया वो। सिंध में पानी जो बहरान संगीन थियण सबब वाड़न समेत बया पोखियल फसल पानी न मिलने सबब सुकन लगा। पंजाब की भी होड़ बरकरार। तकरारी फील्ड कैनाल जरिए सिंधु दरिया में पानी खणप जारी। कोटली डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ बंद थियण बाद दरिया में वारी उडामण लगी। कोटली बैराज में निकलंदड़ वाहन में पानी घटजी वो। डाउन स्ट्रीम में पानी बंद थियण बाद इंसान तोड़े जानवर पीण के पानी लाइ भी परेशान। ठठो सिजावल बदीन टंडो मोहम्मद खान में सूरतहाल संगीन। हैदराबाद डिवीजन के बिन्हीं जिलों मीरपुर खास डिवीजन में पानी बहरान संगीन। हैदराबाद डिवीजन के बिन्हीं

سید شاہ

888 पे इस क्या लिखे विथ योर सिटी नेम और मेरे सवाल का जवाब आपने देना है विथ योर फेवरेट सॉन्ग के साथ, क्योंकि जैसे ही आप मुझे सॉन्ग के साथ अपने जवाब भेजेंगे, अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो हम वो सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे, जैसे कि हमेशा मैं प्ले करती आती हूँ आपके फेवरेट सॉन्ग, तो ऐसे ही आज भी प्ले होगा वो सॉन्ग। और उस सॉन्ग के अलावा मैं आपको बताऊँ कि आपने जो है बहुत सारी बातें करनी है। आओ बात करें, मैं आप सुन रहे हैं मुझे आरजे सना के साथ मौजूद हैं पूरे पूरे 2 घंटे का ये साथ आपका मेरा रहने वाला है आज भी हमेशा की तरह, और इस 2 घंटे में बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तो देखते हैं आज आप लोग मुझसे क्या बात करेंगे और मेरे साथ कौन कौन एंड तक साथ रहता है, तो ये भी देखेंगे आज, क्योंकि आप लोग हमेशा भाग जाते हैं मुझसे पहले, जी कोई मसला ही नहीं है। और मैं आपको बताते चलूं कि मेरा जो आज का सवाल है, सवाल बहुत यूनिक है और उसका पता लगाना है लेकिन थोड़ा सा दिमाग को चलाकर, क्योंकि इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है जितना कि आप लोग समझ लेते हैं मेरे सवाल को। तो पहले तो ये बताएं कि गर्मी कैसी हो रही है। गर्मी तो बहुत हो रही है और मैं आपको बताऊं कि मैं अगर आपसे थोड़ा सा देर से बात कर रही हूँ तो जस्ट इस वजह से कि यार आज मुझे बहुत जो है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। और आपको पता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं जिसको मैं बता सकूँ, हमेशा आप लोगों को ही बता रही होती हूँ, कोई अच्छा सॉन्ग होता है तो भी मैं आप लोगों के साथ सुन रही होती हूँ, और अगर कोई बात होती है तो भी आप लोगों को बता रही हूँ। मैं आज तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैंने कहा नहीं यार आप लोगों के साथ जाना है, बताना है, और अपनी बात अगर मैं आप लोगों से कर रही हूँ तो आप लोगों की बातें भी तो मैंने सुननी है। असल में मेरे दोनों हाथों में लगी है चोट और बहुत गंदी वाली चोट लगी हुई है, और जिसे बोलते हैं ना कि नील पड़ जाना, वो नील पड़ गए हैं, निशान हो गए हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मैंने कहा यार आपके साथ ना जाऊं तो ये चीज़ फिर आपको भी तो तकलीफ होगी, अभी तो मेरे हाथों में तकलीफ हो रही है, फिर बाद में आप लोगों को भी तकलीफ होगी कि आरजी सना हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो ये ज़्यादा फिर मुझे तकलीफ होगी। तो जी मैंने कहा नहीं, आपके साथ जाना मेरे लिए मस्ट है, तो ऐसे ही मैं हूँ आपके साथ मौजूद पूरे पूरे 2 घंटे के लिए। अच्छा मेरे बैक पेन ने भी यार बहुत दर्द देता है, इसका किसी के पास हल है तो वो हल भी मुझे बताए जो मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे प्यारे बहन हो, मेरे प्यारे भाई हो, जो भी मेरे साथ मौजूद है। बैक पेन का यार थोड़ा इलाज तो बताएं कि बैक में बहुत दर्द रहता है मेरे, तो ये किस चीज़ से जाएगा ये मेरा सवाल भी है, मतलब मेरे लिए आप मुझे इसका जवाब बताएं। बाकी एक जो सवाल आज का है वो मैं आपको थोड़ी देर में करने लगी हूँ अभी। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक सॉन्ग हम प्ले करते हैं, सॉन्ग को प्ले करने के बाद हम जाएंगे छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो अपना सवाल आपको बताऊंगी। तो एक सॉन्ग है जो मैंने लगा दिया है, प्ले कर दिया है, इस सॉन्ग को सुनते हैं, इस सॉन्ग को सुनने के बाद हम करेंगे आज का सेगमेंट को स्टार्ट।

0: एलोवेरा फैन
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836
5: आई मोहम्मद उमर गोरी 0319-1557-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

1@1 लिख के अपने सिटी के नाम के साथ आप मुझे SMS कर सकते हैं और मुझे अपने पसंदीदा सॉन्ग के साथ SMS कर सकते हैं. मेरे सवाल का जवाब देख के अपना पसंदीदा सॉन्ग लिख सकते हैं साथ में, ताकि अगर आपका वो जो सॉन्ग होगा अगर वो राइट होगा तो हम जब आपका सॉन्ग प्ले करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक था. तो ये है एक अंदाजा लगाने का तरीका मेरे हिसाब से. तो और जैसे कि मेरे हिसाब से तो दुनिया नहीं चलती, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे हिसाब से तो यही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका जवाब ठीक है तो आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा. लास्ट में अपना जवाब राइट आपको बता भी दूंगी. लेकिन मसरूर अहमद, हमें बहुत अच्छा लगा जी. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. वालेकुम सलाम और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ज्वाइन किया. ऐसे ही आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है और रहना है मेरे पूरे पूरे साथ 1 बजे तक. अच्छा जी, मेरा सवाल था, सवाल मसरूर अहमद यकीन आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं रिपीट कर देती हूँ. सवाल मेरा ये था कि आपने बताना है ऐसा कौन सा गेम है जिसको जो पीछे मतलब जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है, जिस गेम में इंसान पीछे रहने वाला जीत जाता है. तो पता लगाइए और

यार गर्मी तो बढ़ती जा रही है, गर्मी खत्म ही नहीं हो रही, गर्मी तो बहुत बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चलें जी, यहाँ पर हमने एक कर दिया सॉन्ग प्ले और इस सॉन्ग को सुनते हैं। फैज़ अली की आवाज़ में ये सॉन्ग है, फैज़ अली की आवाज़ में अगर कोई हम सॉन्ग ना प्ले करें तो हमारा सुबह का आगाज़ समझो होता ही नहीं है। लेकिन जाने इस दिल का हाल क्या होगा, आज इस सॉन्ग ने तो कमाल कर दिया और इतना अच्छा सॉन्ग है ये, और इसलिए मैंने वो प्ले करके आपको सुनाया था। तो अभी तो मेरे चोटों में भी चोट लग के और तकलीफ हो रही है, क्योंकि एक तो गर्मी है, गर्मी में नील पड़ गए हाथों में, तो बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत दर्द कर रहे हैं। आप लोग इसका हल बताएं ये कैसे सही होंगे। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर कर दिया है सॉन्ग प्ले, जो जो ड्राइव पर है, जो जो ड्राइव पर सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ यहाँ तक जा रही है, सुनते हैं सारे सॉन्ग साथ मिलकर। कर दिया है मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया है जी।

0: तो जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक सॉन्ग जो कि फैजल की आवाज में था, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि कोई भी नई सॉन्ग होता है तो मैं हमेशा कभी भी अकेले नहीं सुनती, हमेशा आप लोगों के साथ सुनती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हो रहे हैं 11:45। तो जी यहाँ पर टाइम होता है हमारे छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे, वापस आके करेंगे बाकी की बात, रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा मत।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपुर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

अब्दुल्ला साहब, आप जो लिखना चाह रहे थे मुझे नहीं समझ आया कि आप क्या लिखना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे और क्या लिखा है आपने, इस बात का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ आया मैंने आपको आपके फ्रेंड के नाम जो है रीड आउट कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे साथ और कौन मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद तो बहुत सारे लोग हैं और उन बहुत सारे लोग तो हैं ही मौजूद, तो देखते हैं SMS हमें कौन करता है। SMS हमें ज्वाइन करते हैं सक्कर के लिए मसूद अहमद कहते हैं कि और जिस तरह जी सवाल का जवाब है। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, सवाल का जवाब उन्होंने दिया है राइट हो तो अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग नाम कर देना। बिल्कुल जी, मैं अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट करूंगी कुछ ही देर में। अपना सॉन्ग अपने पसंद का सॉन्ग आपके लिए प्ले करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है और जवाब मैं बिल्कुल लास्ट में सबको वैसे भी बताती जाऊंगी, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बताती हूँ जिसका अगर सॉन्ग प्ले करती जाती हूँ तो फिर उससे ये होता है कि यार उसको पता चल जाता है कि उसका जवाब बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरीके से मैं बता दूंगी तो जिसका नहीं पता होता वो अपना दिमाग चलाना जरूरी नहीं समझता, तो इसलिए मैं नहीं रिपीट करती। और चीज़ के अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सक्कर के लिए कहते हैं कि वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि सना आप अपने हाथों को ठंडे पानी से बार बार धो लें बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मैं हाथों को कैसे बार बार धोऊं, मेरे हाथों में नील हो गए हैं वो चोट लगने से जो होते हैं ना ब्लू ब्लू वो हो गए हैं और इतना दर्द कर रहे हैं कि मैं इसको कैसे धोऊं और इतना दर्द हो रहा है मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा। थैंक यू फॉर दी आपकी एडवाइस जो आपने मुझे दी है, मैं इम्प्लीमेंट करते हुए सोचूंगी इस बारे में। जब भी कोई इम्प्लीमेंट मैंने किया तो मैंने कहा एडवाइस आप लोगों से लूँ।

लख 58,480 वोटर पंहिंजे वोट जो आइनी हक़ इस्तेमाल कंदा। आई जी गिलगित बल्तिस्तान जो चवण आहे त सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया आहिनि। 17,500 अहलकार सिक्योरिटी ते मुक़ररु हूंदा। असास पोलिंग स्टेशन ते इज़ाफ़ी नफ़री मुक़ररु कई वेंदी। रेंजर्स, पुलिस ऐं ॿिया कानून लाॻू कंदड़ इदारा अलर्ट हूंदा।

ബലൂചിസ്ഥാന ദേശീയ മൂസാഖേലെ മേ ഖാൻഗി ടി വി ചാനൽ ജോ സാഫി കത്തൽ ഹത്യാർ ബന ദുക്കാനത്തെ ബേഥൽ സാഫി ലാല ഇസ്രാഫീൽ കെ छह गोलियों हनी कतल करने बाद फरार थी व्या साफी जो मड़े अस्पताल मुंतकल पुलिस जो चवण आए थे वाकई में मुलस जवाबदारन के जल्द गिरफ्तार कर वो कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग नौजवान कतल एक जख्मी जामे चौक पर फायरिंग में 17 साल शिराज अहमद मार्ज पो एक जख्मी थी पो पुलिस मार्जी पल जो मड़ ए जख्मी अस्पताल मुंतकल कर छो जोईवर से शाहानी बिरादरी के बिंदरन में झेड़ो नौजवान कतल काचे के गोट दोस्त मोहम्मद शाहानी में मामूली गाल झेड़े दौरान फायरिंग सबब मोहम्मद रहीम उर्फ अमीर शाहानी कतल हो पुलिस मौजूद बिन्हीं धरन में रेती खणण के मामले से झेड़ो थो मर्जीबल नौजवान जो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वासन हवाले हैदराबाद भरसा ताल जो कारा के टक्कर बजना फौत टे जख्मी मसूब रुगड़ी भरसा नेशनल हाईवे के हादसे सबब कार में सवार फतेह मोहम्मद मरी अली मुस्तफा फौत साजन अली महर अली गुलाम मुर्तजा कातियार जख्मी

0: मीरपुर बटोरो में जसकम पारा गंजबर कैनाल में पानी खोट खिलाफ़ एहतजाजी रैली अगवाणनि चयो त लखें एकड़ ज़मीन आबाद कंदड़ गंजबर कैनाल में पानी शदीद खोट पैदा थी वई आहे। पानी न हुअण सबबि आबादगरनि जो लखें रुपयनि जो पोखियल वेचारो सड़ी रहियो आहे। पाणी फराहम करे माशी पधहाली खां बचायो वञे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर

0: लाइट टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते दे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ
2: 0385569
3: अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की
4: आजमाइश आती है और ऐसा ये जी जब ये बंदे पर गुजरती है तो उसको पता चल जाता है। तो यकीनन आप लोग भी अगर घर में आप में से मेरे साथ जो मौजूद हैं, अगर आप में से भी कोई मेरे साथ छोटा है और जिस पे ये चीज़ें गुजरी होंगी उसको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि छोटे बच्चे पर जो है हमेशा आजमाइश आती है। जो लाडला होता है उस पर तो ज़्यादा आती है, सिर्फ वो एक नाम से होता है कि यार ये लाडला है। उसको जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ये उसको पता होता है कि उसने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। तो ऐसे ही होता है। तो बस आप लोगों के साथ मैं बात करती हूँ, आप लोगों के साथ आती हूँ, दो घंटे हमारे ऐसे कम हो जाते हैं पता ही नहीं चल रहे होते। तो ऐसे ही आज भी आप लोगों के साथ मेरे दो घंटे इतनी जल्दी ख़त्म हुए हैं और एक्सपेंड हुए हैं। मतलब एक होता है वेस्ट हो जाना, नहीं एक होता है एक्सपेंड होना। तो मतलब ऐसे ही खुशी के साथ अगर हमारे टाइम एक्सपेंड होता है तो ये बहुत ही खुशी की बात होती है।
0: It's 12:15 p.m.

तो ऐसे ही होता है जी। और आपको पता है कि 2 घंटे खत्म हो गए हैं हमारे, मतलब खत्म ही हो गए समझे, तो बस एक और हम सॉन्ग यहाँ पर प्ले करती हूँ, आप लोगों को डेडिकेट करती हूँ, जिससे मुझे बिल्कुल राइट आंसर दिया है, जिससे मुझे बिल्कुल राइट आंसर दिया है उसके लिए डेडिकेट करती हूँ, मसरूर अहमद के लिए और इकबाल लाशारी के लिए, के उन्होंने अपने पसंद का सॉन्ग नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी का कोई भी सॉन्ग चला दें तो इससे अच्छी और क्या बात है। तो जी मैं यहाँ पर अपने पसंद का कोई भी एक सॉन्ग प्ले करती हूँ, डेडिकेट करती हूँ आप दोनों को, और सुनेंगे ये सॉन्ग जो मैं प्ले करने लगी हूँ, डेडिकेट है मसरूर अहमद और इकबाल लाशारी को, असगर खोसो का ये सॉन्ग है। तो जी कर दिया है मैंने प्ले, और देखते हैं ये कौन सा सॉन्ग है, और सुनेंगे साथ में सॉन्ग को भी।

तो जी ये सॉन्ग मैंने प्ले किया था आप लोगों के लिए, मसरूर अहमद के लिए और इकबाल अशारी के लिए, जिसने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया था और उसने जो है जवाब देने के साथ अपना सॉन्ग नहीं बताया था, मतलब उन्होंने इतना यकीन किया था कि मैं अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग प्ले करूं, तो मैंने यहाँ पर सॉन्ग एक प्ले किया था आप दोनों के लिए। और ऐसे ही अब मैं अपना सवाल का जवाब आपको बताती हूँ कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, कि सवाल ये था मेरा कि आप लोगों ने मुझे ये बताना था कि ऐसा कौन सा गेम है जिसके पीछे रहने वाला जीत जाता है। तो जी वो है रस्सा खींचने वाला गेम, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्सा कशी गेम। जैसे कि अगर आप दोनों साइड से अगर पांच बंदे होते हैं, इधर से भी पांच बंदे होते हैं, तो जो हम रस्सी खींचने वाला गेम खेलते थे बचपन में, तो जी ये वही गेम है जिसके पीछे रहने वाला वो जीत जाता है। बिल्कुल ठीक आंसर दिया जिसने भी मुझे अभी तक जवाब दिया। और सॉन्ग एक और सॉन्ग था, एक और भाई ने हमें सॉन्ग बताया था सवाल का जवाब देने के साथ, देख लेते हैं उनका कौन सा सॉन्ग था, वो सॉन्ग भी हम जरूर प्ले करेंगे। अच्छा नहीं, कोई मतलब ऐसा सॉन्ग नहीं था, उन्होंने यही कहा था कि अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग प्ले कर दिएगा। तो जी मैं जो है मैंने अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग प्ले किया था। और ऐसे ये कि इसके अलावा और भी सॉन्ग्स हमारे पास मौजूद हैं, अभी हमारे पास आधा घंटा रिमेनिंग बचा है, तो इस आधे घंटे में सुनेंगे हम बहुत सारे मजे मजे के सॉन्ग्स। तो जी सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग कौन सा सिटी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, कौन सा सिटी से मुझे सुन रहे हैं, और वहाँ पर गर्मी कैसी है और कैसे हालात हैं, और इस गर्मी में आप लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, लाइट्स

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिहे मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: DAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: ओके, मैंने आप लोगों को डेडिकेट किया था जी, यहाँ पर टाइम होता है, छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक तब जाएगा, दो मिनट में जाएंगे, वापस आएंगे एक मिनट के अंदर। तो जी ऐसा कैसे सकता है, पता लगाएं कि दो मिनट में जाएंगे और आएंगे एक मिनट के अंदर। तो जी यहाँ पर करते हैं हम लोग न्यूज ब्रेक, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, वापस आएंगे, वापस आके करते हैं बाकी की बात।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खत्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
3: होमियो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
1: BHMS सिंध,
3: RHMP इस्लामाबाद,
1: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
3: माहिरे अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
1: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
3: कमर दर्द,
1: अर्कुन निसा,
3: जोड़ों का दर्द,
1: हेपेटाइटिस,
3: वजन की कमी या ज्यादती,
1: बे औलादी,
3: गंजपन का मुकम्मल इलाज
1: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर।

तो जी आपको पता है कि यार पूरा पूरा हफ्ता हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं सिर्फ एक इतवार के दिन आने के लिए, और एक इतवार का दिन आता है सिर्फ दो घंटा हमारी बात होती है और यूं ही खत्म हो जाता है. तो ऐसे ही पूरा दिन लेकिन हमारा बहुत अच्छा गुजरता है, सुबह 11 से तो फिर 1 बजे तक रहता है, जैसे कि मेरा आपके साथ. जिससे मैंने अभी ज्वाइन किया और टाइमली ज्वाइन नहीं कर पाते, तो काइंडली आप लोग मुझे टाइमली ज्वाइन किया करें सुबह 11 से तो फिर 1 बजे तक, जहाँ तक तो मेरी आवाज़ आ रही है, जो गाड़ी चला रहा हो वो भी और जो घर में बैठ के FM सुन रहा है वो भी. तो आपने SKR लिख के टाइप करना होता है अपने विथ योर सिटी नेम, प्यार से सिटी का नाम के साथ आपने मुझे SMS करना होता है, अपने नाम के साथ मैसेज करना होता है और कोई भी पसंदीदा सॉन्ग के साथ मैसेज करना होता है जो मैं सवाल करती हूँ उस जवाब के साथ. तो क्योंकि अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपका जवाब ठीक होगा तो आपको पता है कि मैं वो सॉन्ग प्ले कर देती हूं, तो आपको पता चल जाता है. तो ऐसे ही है जी मेरा शो आपके साथ, ऐसे ही होता है मज़े मज़े की बातों के साथ. कोई मैं आपके साथ कोई सख्ती से पेश नहीं आती, आपको पसंदीदा सॉन्ग सुनाने को मिल रहे होते हैं आपको. तो ऐसे अभी देखते हैं, मैंने आपको बोला है जो जो मुझसे एक कोई अच्छा सॉन्ग सुनना चाहता है जो सबसे पहले मुझे कमेंट कर देता है, जिसका भी मेरे पास कमेंट रिसीव हो जाएगा सबसे पहले तो मैं उसका सॉन्ग प्ले करूंगी यहाँ पर लास्ट में जाने से पहले. तो आपके पास हैं सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर, अभी देखते हैं कौन मुझे सबसे पहले जवाब दे देगा. जो भी मुझे सबसे पहले जवाब देता है तो उसके पसंद का सॉन्ग हम कर देंगे प्ले.

तो यहाँ पर देखते हैं यार, अभी तक हमारे साथ अभी तक किसी ने कोई भी सॉन्ग शेयर नहीं किया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी मैं जो है अपने पसंद का सॉन्ग चलाऊंगी। अच्छा जी ओके, हमारे साथ एक और हैं जो सॉन्ग का नाम बताया, मसरूर अहमद मसर मौजूद हैं, कहते हैं तेरे बिन ड्रामे का ओएसटी सॉन्ग प्ले करते हैं। ओके जी, मैं ड्रामे का ओएसटी हम सॉन्ग प्ले करते हैं, लेकिन अभी एक ट्रेलर सुनते हैं। पहले मेरे पसंद के एक सॉन्ग मैंने कर दिया है प्ले, सुनते हैं वो। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा पहले चलो कोई नहीं आता तो मैं प्ले कर देती हूँ, लेकिन अभी जो है तेरे बिन का ओएसटी सॉन्ग प्ले करना है तो कर लेते हैं वाला सॉन्ग भी जी प्ले।

मैंने कर दिया है उनका ये पसंदीदा सॉन्ग प्ले तेरे बिन, और उस चीज सॉन्ग हमने प्ले कर दिया है, वो लास्ट में प्ले करती जाऊंगी। तो जी यहाँ पर आपको पता है कि जी हमारे पास टाइम होता है यहाँ पर बिल्कुल ही 5 मिनट, और 5 मिनट 6 मिनट बचे हैं, 6 मिनट के अंदर करनी है हमने वाइंड अप, और मिलेंगे फिर हम एक नए सेगमेंट में नए एक सवाल के साथ अगले इतवार को। रहेगा मेरे साथ और जाएगा नहीं कहीं। तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग प्ले कर दिया है, और सॉन्ग प्ले कर दिया है हमने तेरे बिन ओएसटी सॉन्ग है। क्या बात है, बेवफाओं से भी तो प्यार होता है। जी बिल्कुल, प्यार ही बेवफा से होता है। आपको क्या पता, जो बेवफा होता है वही दिल को पसंद आ रहा होता है, लेकिन जब बाद में धोखा मिलता है तो पता चलता है यार ये तो बंदा बेवफा था, होता वो पहले से नजर हमें बाद में आता है, जब हम दिल को तकलीफ पहुंचा चुके होते हैं तब हमें ये चीज समझ आ रही होती है। जी मैंने यहाँ पर सॉन्ग कर दिया, पहले तो जी मिलेंगे अगले इतवार को। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में हमेशा आप लोग रहेंगे मौजूद। और तेरे बिन यूएसटी को सॉन्ग कर दिया है मैंने प्ले, और सुनते हैं सॉन्ग का भी मिलकर सब। रखिएगा अपना ख्याल, मिलेंगे अल्लाह हाफिज़ अगले इतवार को एक नए सवाल के साथ। दुआ में याद रखिएगा, मेरी भी दुआ में आप लोग हमेशा मौजूद हैं।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगर लस्टिगरी कॉलेज

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Yaad rakhanda
3: apna ghar Mehrabpur aur Mehrabpur ki awaaz GA FM 94.
4: मोटी ईंदा से काडे वींदा से मोटी ईंदा से काडे वींदा से तुंजो साथ छडे सच पुछी ओ सांवरा दुखिया थींदा से तुंजो साथ छडे मोटी ईंदा से काडे वींदा से तुंजो साथ छडे सच पुछी ओ सांवरा दुखिया थींदा से तुंजो साथ छडे हेडो जीवन हे खिलो कीअं कटींदासीं तुंहिंजो साथ छॾे मोटी ईंदासीं काॾे वेंदासीं तुंहिंजो साथ छॾे जीअण जाइज़ आहे मगर पाण न जीअंदासीं तुंहिंजो साथ छॾे

fantastic, interesting and entertaining character. You RJ and your DJ Sidra Muskan, naam to suna hi hoga. To bilkul aapki Sidra aap logo ke saath saath mukhatib hai. Mere saath kaun hai mujhe batate ja rahe hain, apne hone ka ehsaas dilate ja rahe hain aur zara apne haal chaal bhi bataiye. So dear listeners, anta kaifa halatun, kaise hi aapki halatun? Umeedan shadeedan ke bilkul theek thaak honge, sapakul mood ke saath sapakul program ka intezar kare honge. To aapke jo intezar ki ghadiyan thi wo khatam ho chuki hai. Finally yahan par apne entriyan maari li hain. Aapko pata hai na, jab hum entriyan maarte hain to bahut saare logo ke dilon mein ghantiyan bajate hain. To yakeenan aapke dilon mein bhi ghantiyan bajayenge aur aapko batayenge ki aapka hamara saath puri 3 baje tak ka. To aap hamare saath maujood rahiye, hum aapke saath maujood rehte hain bahut zyada baaton ke saath, bahut zyada fun ke saath aur bahut zyada khoobsurti ke raazon ke saath saath meri jaan. To chaliye ji, bilkul yahan par bahut se log hamare saath aise maujood hote hain jo ki apne kaamon ke dauran hame sun rahe hote hain. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे. ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालें, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान. सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करती भैया आपकी सिद्रा. तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसे करते ही आकर से प्रोग्राम कर लेते हैं. आगे से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ब्यूटीफुल सी नाद के साथ जो कि आतिफ असलम की आवाज में होने वाली है. तो नाद सुनते हैं, उसके बाद ना हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है. तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के. तावन से इस्तेमाल करते जाइए और खूबसूरत होते जाइए.

0: मेरा व्हाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। व्हाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: ਰੱਖਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਮਾਹਿਰੇ ਅਮਰਾਜ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗੱਲੋ ਪੁਰਾਣੋ ਨਜ਼ਲੋ ਨਿੱਛੋ ਮੱਥੇ ਜੋ ਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੰਨ ਜੋ ਸੂਰ ਘੱਟ ਬੁਧਣ ਮੇ ਅਚਣ ਸ਼ੁਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਲ ਜਾ ਮਰਜ਼ ਫਾਲਜ ਖੰਘ ਟੀਬੀ ਮਾਦੇ ਜੀ ਅਲਸਰ ਮਾਦੇ ਜੀ ਜਲਨ ਦਿਲੀ ਜੋ ਵਧਣ ਜਿਗਰ ਜਾ ਮਰਜ਼ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਬੀ ਸੀ ਗੁਰਦੇ ਜੀ ਪਥਰੀ ਮਸਾਨੇ ਜੀ ਪਥਰੀ ਜੋ ਬਗੈਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਕਯੋ ਵਣੇ ਥੋ ਗੁਰਦਨ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਰੰਗ ਸਾਂਵਰੋ ਚਿਹਰੇ ਜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਫਟ ਫੁਰੜਿਓ ਬਾਰਨ ਮੇ ਕਦ ਜੋ ਨ ਵਧਣ ਮਰਦਨ ਐਂ ਔਰਤਨ ਮੇ ਵਜ਼ਨ ਜੋ ਨ ਵਧਣ ਉਨ੍ਹਨ ਸਭਨੀ ਬਿਮਾਰਨ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਕਯੋ ਵਣੇ ਥੋ ਰਾਬਤੇ ਲਈ 0301-9196-851
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8559।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

सोप से या फिर फेस वॉश से अच्छे तरीके से अपने चेहरे को साफ कीजिए, क्लीन कीजिए। उसके बाद व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए, सारी रात लगी रहने दें। उसके बाद सुबह उठकर अपना फेस वॉश दोबारा से कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सिर्फ ये 5 रातों का प्लान है जनाब, 5 रातें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल करेंगे, ऑल स्किन टाइप के लिए है, नेचुरल अजा से तैयार शुदा है, तो और क्या चाहिए आप लोगों को। उसके अलावा अगर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब की बात करें तो इसको कैसे लगाना है, तो इसको भी आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, रात के टाइम आप इस्तेमाल करें। ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं। टीनएजर्स के लिए तो भाई बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा, क्योंकि खास करके टीनएजर्स की जब एज होती है ना, वो 18 साल से आगे जाते हैं तो उनके चेहरे पर इतने दाने निकल आते हैं और वो तमाम तर चीजें उनको इतना परेशान कर देती हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा। आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लाजमी लगा कर देखिएगा, आपके चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे, दानों के निशानात खत्म हो जाएंगे और आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी और क्लीन हो जाएगी। लगाने के तरीकेकार बिल्कुल वही है, रात के टाइम लगाएंगे, अपना फेस वॉश करेंगे, ठीक है, सबसे पहले चेहरे को साफ सुथरा रखिए, उसके बाद जो ना हाथों को भी साफ सुथरा रखिए, क्लीन हाथों से अपने चेहरे पर लगाइए जहां जहां पर दाने हैं, निशानात हैं, जो भी चीज आप रिमूव करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप व्हाइट एश लवली क्रीम लगाना चाहते हैं तो ये जनाब आप दिन में लगा सकते हैं, रात में लगा सकते हैं, दोपहर में जब आपका दिल करे लगाएंगे, क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है और ये आप लड़के लड़कियां, मर्द हजरात, खवातीन, बच्चे, सारे लोग ही इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट एश लवली क्रीम ऐसा है कि बस आप थोड़ी सी अपने चेहरे पर लगा लें और आप रेडी हैं। और ये एक मजे की बात जो मुझे लगती है कि व्हाइट एश लवली क्रीम गर्मियों के सीजन के लिए तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा, क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम जो है इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है और सनस्क्रीन ऐड करने का जो मकसद है वो बिल्कुल ये है कि आप लोगों की स्किन जो है ना वो खूबसूरत होने के साथ साथ आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहे। यानी कि ये जो आपके चेहरे पर सूरज के असरात पड़ते हैं ना, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, आपकी स्किन जो है वो डल हो जाती है, आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब आप व्हाइट एश लवली क्रीम लगाकर हैं, कहीं ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये सारे भी कोई भी काम आप करते हैं, तो व्हाइट एश लवली क्रीम बस थोड़ी सी आप अपने चेहरे पर लगा लें, आपके चेहरे पर खूबसूरती भी आपको मिलेगी और आपके चेहरे की स्किन जो है वो प्रोटेक्ट भी होती रहेगी। तो ये बहुत एक अच्छा सा

0: और हे बेटा सिद्रा, योर टॉपिक आंसर ओके. ऑनलाइन तो वाकई ऐसा है कि लोग यकीन कर लेते हैं, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है. अच्छा, धरती दिल हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं प्यारी? अच्छा नूरेसन, तुनो भाई कहते हैं आपने थर्सडे वाले शो में स्मार्ट किशोर के दो गाने प्ले किए थे. ये तो आपने बिल्कुल एक झूठ बोल दिया कि हमने दो गाने लगाए थे, शायद एक भी लगाया हो उनका. और कहते हैं मैं आपकी, हाँ जी बिल्कुल, आप कंप्लेन कीजिए, जो बात गलत हो तो उसके ऊपर आप बेशक बोला करें, लेकिन जो बात हो ही ना तो उसके ऊपर बोलने का आपको कोई हक नहीं है. या हकीकत आ जाएंगे, जितनी इज्जत डिबिया ना ओतरो ही मथे चढ़ी वेंदो. बोलना तो खैर मैं बहुत कुछ आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा आपका लिहाज कर रही हूँ और जो शायद करना चाहिए थोड़ा ना आप अपने दिमाग का जरा इलाज करवाई. मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है. और रुनखा इलावा जी को पोस्ट के लाइक एंड शेयर करियो, जन मानो अन्य कौन कहो है. अच्छा हमदुल्ला मलाखेल हमारे दिन काफी दिनों के बाद हमारे शो में शामिल हो रहे हैं और कहते हैं कि मैं कोयटा से आपका शो सुन रहा हूं. वेलकम जी, वेलकम, बहुत शुक्रिया. हिदायतुल्ला कहते हैं कि सिद्रा वो पूछना ये था कि मुल्क भर में आम का कत्ल हो रहा है तो उसे कत्ल आम कहा जा सकता है? बिल्कुल जी कहा जा सकता है. और नखा इलावा जी को सो अगर तुम्हें व्हाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल अन्य ताईं कौन कयो आहे तो बाबा कंदा हलो व्हाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट तव्हां जी खूबसूरती जी जमानत आहे. अगर तव्हां चाहियो था तो तव्हां जी खूबसूरती तव्हां सां गॾु रहे, खूबसूरती जी हिफाजत भी थींदी रहे. तो तव्हां व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो, मर्द मायूं सभ ही लॻाइनि पिया. सो तव्हां बि लॻायो बाबा, सोणा सोणा थींदा हलो. और नाज़िर लाहिया हमारे साथ है. नाज़िर लाहिया हमारे साथ कहां से हैं जी? ओके जी, लाहिया से आप हमारे शो सुन रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया. अच्छा आदिल कहते हैं सिद्रा ये गाना, हाँ चले ये गाना आपको सुनाते हैं, थोड़ा सबर कीजिए. और लुबी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सिद्धू जानी क्या हाल है आपके, मैं भी आपके साथ साथ हूँ, नाइस शो. सिद्धू आज मास्टर मजदूर का गाना तो प्ले करो, आज ये किसी और की फरमाइश है. चले ठीक है, मैं देखती हूँ, कोई भी लगा दूँ ना, या फिर आपने गाना भी बोला है.
1: सरकार कलंदर लाले शहर बाज सुनू सचलवा सचार सिंधु सते निखा शाद रदी क्या.
0: ओके जवार अली दिनो अब्बासी हमारे साथ है. ओके जवार भाई, तुम्हारा जो मोहब्बत हुआ निडा स्टिकर शेयर करे सदैन छोबला खैर था है. दर्दे दिल कहती है कि ये लाजिम तो नहीं कि तुझे आंखों से ही देखूं, तेरी आवाज को सुनना तेरे दीदार से कम तो नहीं. यह भी गाल आए. अच्छा किशोर भाई कहते हैं टॉपिक असा सब आजमाए बैठा आयो, फेस टू फेस वाली गाल अलग आ, वो रिश्तो भले केड़ो भी हो जे. सही सही सही सही.

क्या हुआ किशोर भाई, आपको हवा हवा इतनी मतलब याद है आजकल? हवा हवा क्या हो गया है आपके? यहाँ कराची में हवाएं कुछ ज्यादा चल रही है बताए जरा। उन्होंने कहा अलावा जेको था वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कयो को न छो त वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल जॾहिं तव्हां कंदा त तव्हां बि पोइ हवा में उॾंदा, सही आहे? ॿियनि खे त ख़ैर तव्हां उॾायो था पर तव्हां पाण बि उॾो, सही आहे न?

शोभा जी, अलीजा भी हमारा शो सुन रही है। अलीजा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपको भी वेलकम करते हैं। साथ साथ जो है ना, आप डायल करती रहिए 03-15-799-0595। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और जी, ये हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जमान भाई। क्या कहते हैं टॉपिक? इतनी महंगाई है, दोनों को इग्नोर किया जाए। ये तो वैसे सोचा ही नहीं था दोस्ती का। हाँ ठीक है, बस ठीक है, मैं समझ गई बात को, गहराई को समझ गई हूँ। अच्छा, दर्दी दिल क्या कहती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है ना, कुछ लोग आते हैं दो तीन दिन बाद या दो तीन हफ्तों बाद आके कहते हैं, तुम्हारी आवाज तो मटी सी भैया, जाए बिदर। अरे लुबी कहती, ऑनलाइन दोस्ती अच्छी नहीं है।

दुख देती है ऑनलाइन दोस्ती. हाँ त न कंदा कयो ऑनलाइन दोस्ती. लुबड़ी त वैसे भी ॾाढी मतलब मासूम छोकिरी आहे. इन खां अलावा जेको आहे अच्छा सैयद फारूक लाड़काना आए हैं. सैयद फारूक आपको वेलकम करते हैं लाड़काना आने पर. और ये चेतन राम ओड हमारे साथ है उमरकोट खां. तमा असो प्रोग्राम बुधो पया मोहब्बतूं प्यारे भाजियूं.

अच्छा ये बात है, अगर मतलब जो है ना, मैं किसी के कहने पर किसी को ब्लॉक नहीं करती, हाँ उन्हनि जा पंहिंजा करतूं त कुझु अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजी वजह सां हू ब्लॉक लिस्ट में वेंदा आहिनि. सो इहा ॻाल्हि अथव, मतां वरी कोई न ग़लति थी रहे त बाबा मुंहिंजे चवण ते ॾिस फलाणे खे ब्लॉक कयो अथई, न या का बि अहिड़ी कोई बि पंहिंजे ज़हन में इहा ॻाल्हि न विहारे. पंहिंजा करतूं त वठी वेंदा आहिनि हर कंहिंखे ब्लॉक लिस्ट में, सम्झो था. हिते मुंहिंजे ख़्याल में कोई बि एतिरो इम्पोर्टेंट न आहे त मां हुनजे चवण ते कंहिंखे ब्लॉक कयां, सम्झो था. इहा ॻाल्हि पंहिंजे ज़हन में विहारे छॾियो.

अच्छा लीला मस्त बनायो आहे हिन गाने जी फरमाइश मूंखे कुझु ॾींहं पहिरियां शायद इमरान भाउ कई हुई सो मूं ही गानो हुननि खे डेडिकेट कयो आहे हुन सां गॾु गॾु इमरान भाई जेको आहे न हू वाइट एसी लवली क्रीम बि लॻाए पियो ऐं सफ़ा लवली लवली थी वियो आहे अगरि तव्हां बि वाइट एसी लवली क्रीम लॻायो था या वरी कोई ॿियो प्रोडक्ट लॻायो था वाइट एस ब्यूटी क्रीम लॻायो था डॉक्टर पिंपल ट्यूब लॻायो था साबुण लॻायो था फेस वॉश लॻायो था मूंखे ॿुधायो नी ॿुधाईंदा छो न आयो भला हिते बि कंजूसी न वणंदव

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि सदरा लोग ऑनलाइन भी बोलते हैं हम अच्छे हैं लेकिन वक्त के साथ उनकी असलियत सामने आ जाती, अब तुम अपने प्रोग्राम में ही देख लो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बुरो मानो ना हमेशा बुरो ही हूँ है। उनकी तव्हां केॾी रिस्पेक्ट ॾियो छा बि कयो, पंहिंजी मतिलबु मूंखे लॻंदो त मां कंहिंखे इज़त ॾेई करे उनखे शायदि बहितर बणाए सघां थी, पर इहो ग़लति हूंदो आहे। तव्हां चाहे बुरो इंसान जेको न बुरो ई रहंदो आहे, चाहे तव्हां उनखे इज़त ॾियो या न ॾियो, हुन सां उनखे फ़र्क़ु न आहे पवंदो। सो बसि ठीकु आहे, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे, और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहे, ठीक है। और सोना रोमियो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जी। वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं? अल्लाह किशोर भाई पाण हवाउनि में आहे, छोभला ख़ैर ताईं। इकबाल लाशारी हमारे साथ मीरपुर खास से ज्वाइन कर चुके हैं जी प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं ना 2 बजे के बाद आप लोगों की कॉल्स की जाने आने वाली हूँ, तो आप कॉल्स पर आइएगा और मुझे बताइएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट का। और वैसे भी आप लोगों से ये चीज मैंने जानी थी, इसीलिए मैंने कुछ दिनों के बाद जो है ना वो कॉल्स लेना स्टार्ट करी, ताकि आप लोगों से मैं जान सकूँ कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं।

अच्छा बशीर लगारी गोट मीर खान लगारी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर तवांजी सफा ठीक आहे तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो ख़ुशि आहियो मज़े में आहियो ऐं तव्हांजे ॻोठ में मिलनि था कोन ही प्रोडक्ट ॿुधायो थो सही और अब्दुल्ला महरम आरे साथी वालेकुम अस्सलाम बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम ज़बरदस्त आहे मां हणां थो वाह वाह वाह वाह रिज़ल्ट कीअं मिलिया ॿुधायो थो सही और मीर अला ॾिनो खान टालपुर आरे साथी आपका शो वेरी वेरी नाइस सलाम आपको जी वालेकुम।

इलाज कंदा आहिने एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाए 0300-3385-569 0300-3385-69

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

साथ ही साथ जो है ना बिल्कुल कॉल ही आना स्टार्ट भी हो गई. तो ऐसा करते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉल है ना ऐसे जरा पिक कर लेते हैं, देखते हैं फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. केरे से सगर मौजूद है. ओके जमाल दिन बाद साला खुश आयो. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. मुख्य बधाई प्रोग्राम बुधो पिया. अच्छा मुख्य बुधाए के प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो थव. साबुन इस्तेमाल कयो पया. चलो जबरदस्त किए लगो आ तमा के मजो आयो. अच्छा मुख्य बुधाए सवाल बुधो तो टॉपिक ते तमा छ चवंदा. हाँ टॉपिक यो आ जी दोस्ती अजकल मानू ऑनलाइन रखन था मोबाइल इन ते वो सही है या फिर जी मतलब हकीकत वाली दोस्ती आ भली आ. चलो जबरदस्त केड़न दोस्तन की याद कंदा क्या गानो शानड़ो बुधाईंदा. जी जी गानो बुधायो.

0: DAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: डॉक्टर नूर हुसैन पुस्यो, MBBS FCPS, तजुर्बेकार ऐं माहिर जनरल फिजिशियन। हिते
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीहन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 2196 851

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-2723-4। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-3865-453।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेहरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 0301-3992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो।

जनाब क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना आप यहाँ पर सुन रहे हो और साथ ही साथ प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से। आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम में, यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। ओके जी, इसी के साथ साथ मैंने आज प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा था कि मुझे बताइए जरा कि ऑफलाइन दोस्तियां ज्यादा बेहतर होती है या फिर ऑनलाइन दोस्तियां ज्यादा बेहतर है, आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है कि ऑनलाइन दोस्ती सही है या फिर ऑफलाइन दोस्ती सही है। इसी के साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस हैं जो कि आते जा रहे हैं।

0: ओके जी, कश्यप कहती हैं कि निगत नाज का कोई भी सॉन्ग सुनाना वीआईपी हो. ओके जी जी बिल्कुल, निगत नाज का गाना सुनेंगे आज नहीं तो कल जरूर सुनेंगे. ठीक है. और चाचा खालिद आपका बहुत शुक्रिया, आपने पैनल पर बहुत ज्यादा वाले मैसेजेस कर दिए हैं. और ये साइमा मीर हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम. साइमा मीर कहती माशाल्लाह माय बेस्ट आरजे सिद्रा मुस्कान. आओ चाय पियो. टॉपिक, दिलियां सच्ची हो तो दोनों अच्छी फिर भी रियल वफादार हो सकती है. ओके जी. और गाना जो आपने बोला है वो थोड़ा सा कट हो गया है, मैसेज इधर का उधर हो गया. तो मेरी जान आपका बहुत शुक्रिया. और फहा देरी है सऊद देरी फ्रॉम नवाबशाह कहती सलामती शो तमाजो नाइस आहे. वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा मोहब्बत हूँ तमाजू. इरम कहती है आज मैं भी आपका शो सुन रही हूँ, बहुत शुक्रिया. वैसे तो आप डेली सुनती हैं क्या. चले थैंक यू सो मच हमारी प्यारी इरम हमारे साथ है. और कश्यप कहती है आप ही, आपकी वॉइस एंड आपकी हंसी बहुत बेस्ट है. माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारी हैं. आप ही अगर आपको टाइम मिले तो सॉन्ग चलाना नहीं तो चले. ठीक है ठीक है, मैं आपका गाना निगत नाज का गाना जो है ना वो मैं कल लाजमी लगा दूंगी. ठीक है, बस आप जो है ना वो वेट कीजिएगा. और कहती है अच्छा ठीक है. साइमा कहती है गाल कंजूसी जी ना है सिद्रा, गाल सच जी आहे. तो पो सही आ ना तमा के जेको चवां त मनी ना. अच्छा चलो ठीक है, मजा क्या भाई. वैसे सही आ, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है मेरी प्यारी सी परी. और शोनी कहती है आपकी जान में आ गई आपके शो में, बहुत अच्छा किया मेरी जाना आपने शोनी. और राशिद अवान हमारे साथ फ्रॉम मेहरापुर से कहते हैं कि सिद्रा मुस्कान आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा जा रहा है, हमेशा खुश रहें. आमीन. आप भी खुश रहें और ऐसे ही हमारे साथ रहें और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहें. कर रहे हैं ना, बताइए जल्दी. अच्छा लोबी कहती है ऑनलाइन दोस्त बिना बताए ही छोड़ देते हैं, इसीलिए ऑनलाइन दोस्ती से दूर रहना चाहिए. ये भी सही बात है जी. और जमशेद फारूकी हमारे साथ मौजूद है. जमशेद फारूकी भाई मुजफ्फरा गर्सी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया. और ठूफ चूसल से मोलाई मुजाहिद बोजदार कहते हैं सिडो जी टॉपिक वो आपने कहावत तो सुनी होगी, रोटी तंदूर की अच्छी दोस्ती दूर की अच्छी. मेरे ख्याल में दोस्ती रियल लाइफ की अच्छी होती है. क्या बोलती तो माँ भी यू ही बोलती. और वहां से भाई हमारे साथ क्या कहते हैं, यदि सिडो ऑफलाइन दोस्ती भली आए, ऑफलाइन दोस्ती भली आए. चलो सही है, ता चौथा तो मनु था न मनु. अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं सिद्रा आपने नोट किया है आजकल सुबह नहीं होती बल्कि सीधा दोपहर होती है, या तव्हां सफ़ा सही गाल कई आहे. असां सुबुह न ॾिसंदा, बाक़ी असां दोपहर ॾिसंदा आहियूं. उन खां अलावा आदिल कहती इतना शेयरिंग भी कम है क्या आपके लिए. नहीं नहीं, वैसे आज आपने बहुत अच्छी शेयरिंग दे दी मुझे, सो बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और उन खां अलावा कीरा ॾिसां त. अच्छा किशोर भाई कहते अदी टॉपिक जंहिंखे ऑफलाइन केर मुंहुं नथो ॾे न हू वीचारा ऑनलाइन दोस्ती कंदा आहिनि. मुंहुं जहिड़ा स्मार्ट वाइट एश ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा आहिनि हू ऑफलाइन में. बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे बाबा, जेके सुहिणा हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ त सभु दीवानो हूंदो आहे. ऐं बाक़ी ऑफलाइन ते जेको आहे न ऑनलाइन ते ॾिठो वञे त इलाही अहिड़ा केसिस बि ईंदा आहिनि साम्हूं. सो बच कहिड़े न रे बाबा. वाइट एस ब्यूटी क्रीम लॻायो सही आहे किशोर भाई जी, हा तव्हां बि सुहिणा थी वञो. एस एन अरबाणी तव्हां कॉल कयो पिया त तव्हां ॻाल्हाए वठो न भला, शर्म जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे. इहो एॾो शर्म काॾां आंदो अथव ॿुधायो त सही मूंखे. अच्छा उन खां अलावा अनवर भाउ असां सां गॾु मौजूदु आहे. अनवर भाउ वालेकुम असलाम, ख़ुशि आहियो, सफ़ा मज़े में आयो. और रहन जी और के राजी मीर मुमताज़ अली जतोई हमारे साथ मौजूदु आहे. वालेकुम असलाम भाउ, तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि. रज़ा बिरोही हमारे साथ हैं. अली अकबर बिरोही भाई भी हमारे साथ मौजूद है. थैंक यू सो मच, आप दोनों को भी वेलकम करते हैं. अच्छा तो हम कॉल्स की जानेब आ जाते हैं. ओके जी, हजार खान जतोई भाई भी हमारे साथ मौजूद है. थैंक यू सो मच. अच्छा मां त सिर्फ़ु इहो ई तव्हांखे चवंदमि त तव्हां व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कयो पिया त कंदा रहो, ऐं न पिया कयो त कयो बाबा कॾहिं कंदा. छो त जॾहिं तव्हां व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कंदा न त तव्हांखे ख़बर कीअं पवंदी त ही वाक़ई भला प्रोडक्ट आहिनि. सो तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसो, तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे मिली वेंदी, सम्झो था. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि मार्केट में अवेलेबल अथव, तव्हां वञो वञी वठी अचो, माण्हुनि खां पुछा गुछा करायो किथे मिले थी नथी मिले, जीअं तव्हांजे लाइ आसानी थी वञे. ठीकु आहे, ऐं कॉलिंग नंबर आहे 0332213228. सो इन नंबर ते तव्हां राबितो कयो, ऐं नंबर ते राबितो करण खां पोइ तव्हांजे एरिया में अवेलेबल थी वेंदा ही सभु प्रोडक्ट जेके बि तव्हांखे प्रोग्राम में ॿुधाया वञनि. वञनि था. सो हाणे ही वारी कॉल वठूं था, ॾिसूं था केरु कॉलर असां सां गॾु मौजूदु आहे, छा थो चए. हैलो, अस्सलाम वालेकुम. हैलो, वालेकुम अस्सलाम. केरु भाउ सां गॾु मौजूदु आहे, किथां कॉल कई
1: आहे?
0: मोरो खां कॉल कई आहे. नालो तव्हांजो सम्झ में न आयो, वराए ॿुधाइजो. हफ़ीज़. ओके हफ़ीज़, मोरो खां कॉल कई आहे. मूंखे ॿुधाए, प्रोग्राम ॿुधो पिया असांजो
1: हफ़ीज़?
0: ओके, ज़बरदस्त. मूंखे इहो ॿुधायो, जी मूंखे इहो ॿुधायो, मोरो में वाइट एज जा प्रोडक्ट मिलनि था? पुछा कराई अथव. अच्छा अच्छा, चले मूंखे. हां जी, आवाज कंहिंखे सम्झ में अचे त मूंखे ॿुधाइजो छा चयो. अलाए कहिड़ो मसलो वाक़ई नेटवर्क सां, ऐं नेटवर्क एॾो ख़राबु थियण जी वजह सां तव्हांजी कॉल्स, तव्हांजो आवाज़ मूं ताईं सही तरीक़े सां पहुचे कोन पियो. सो इन वजह सां थोरो कॉल जेको आहे न असां घटि वठंदा आहियूं, पर ख़ैर एनी वेज़ मां कोशिशि कयां थी त तव्हांजी कॉल जेके आहिनि प्रोग्राम में शामिलु थी सघनि. ऐं कॉलिंग नंबर आहे 0333221322888. जिते तव्हांजे घर में सही नेटवर्क ईंदो हुजे, महिरबानी करे उते बि करे तव्हां कॉल कयो, जीअं असां ताईं तव्हांजो आवाज़ सही तरीक़े सां पहुचे. ठीकु आहे, सो नेक्स्ट कॉल. हैलो, अस्सलाम वालेकुम. एक और कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज अचे तो? कप जी, कप जी अचे तो? अदा अदा अदो नाए दर्द अलाए काडे हो अदो नूरे झुल्ला बेबंदे मुहब्बतें नया. Okay, janab, so calling number 0333221322888. Next call. Vatun tha, disun tha, next caller. KDS is a good maajood hai. Hello, assalamu alaikum. Waqai lag raha hai, time zaya ho raha hai aur kuch bhi nahi hai. तो कॉल जो है ना, हम थोड़ा सा इसका मसला हल करवाते हैं. पता नहीं क्यों लोगों की कॉल जो है ना वो सही नहीं आ रही हमारे प्रोग्राम में, और ये कॉलिंग वाला जो सिस्टम है इसको सही करने के बाद हम प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम में कॉल्स भी लेंगे. ये है ना कि जब इस तरह की कॉल्स आती प्रोग्राम में तो मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आता, और मैं सोचती हूँ कि भाई जब लोगों की बातें प्रोग्राम में पहुँच नहीं पा रही है कॉल के जरिए, तो आप ऐसा करिए, मुझे मैसेज कर दें, ठीक है? कॉमेंट भी कर सकते हैं. तो जल्दी से आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जा रहे हैं. अच्छा, गाने मेरे पास हैं दो तीन, तो ज़रा हम जल्दी से ना गाने आप लोगों के सुन लेते हैं. ये वाला गाना है जो कि मास्टर मंजूर की आवाज में गाना होने वाला है. इस गाने की फरमाइश हमें हमारी प्यारी लुबी ने कर दी थी. तो लुबी, ये गाना तुम्हें डेडिकेट जाता है. और बताएं जरा, अर्जी भुट्टो में अवेलेबल था प्रोडक्ट कौन? अच्छा, अर्जी भुट्टो में अगर अञा ताईं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोन था मिलनि, त तव्हां लुबना ज़रूर नंबर ते राबितो कजो, जीअं तव्हांजे अर्जी भुट्टो ॻोठ में बि अवेलेबल थी वञनि वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. नंबर आहे 03157990595.

0: मिठी दिल
1: बर... अच्छा एसन के दी आवाज को नहीं दो बस छड मां छड़े छड़ो पे रही मारे बस की बात ही नहीं बाबा अच्छा सोनी आपके लिए पंजाबी जो गाना है ना वो मैं कल लगा दूंगी बहुत प्यारा मेरे पास एक पंजाबी गाना है तो आप तो मैं कल सुनाऊंगी ठीक है आज का जो है ना वो टाइम जरा फुल हो चुका है तो फिर कल

ओके जी दिलबर जी बोली अगर मिठड़ी हुजे त पोइ बाकी ॿियो छा खपे दिलबर अगर सोनो हुजे त वरी ॿियो अञा छा खपे सो अगरि तव्हां बि पंहिंजी ख़ूबसूरती खे वधाइण चाहियो था त बाबा तव्हांजे लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम मार्केट में अवेलेबल आहे ऐं वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे खोड़ सारा ॿिया बि प्रोडक्ट मिलनि था जी वाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांजी स्किन खे फ्रेश बणाईंदी फेयर बणाईंदी गोरो बणाईंदी ऐं तव्हांजी स्किन ते जेके बि मसाला मसाला आहिनि उहे सभु दूर करे छॾींदी वाइट एश ब्यूटी क्रीम तव्हां राजे टाइम ते लॻाए सघो था छो त हीअ हिकिड़ी नाइट क्रीम आहे उन खां अलावा वाइट एश लवली क्रीम तव्हांजे लाइ मौजूदु आहे वाइट एश लवली क्रीम जेका फेयरनेस क्रीम आहे ॾींहं जो तव्हां लॻायो सही आहे मेकअप खां अगरि तव्हां थोरो छुटकारो चाहियो था गर्मी जो मौसम आहे त तव्हां वाइट एश लवली क्रीम लॻाए सघो था ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आहे जेको उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जंहिंजे चहिरे ते दाणा काफ़ी ज़्यादा आहिनि अगरि तव्हां एक्नी खे ख़तमु करणु चाहियो था त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लाज़मी लॻाए ॾिसजो उन सां गॾोगॾु जेको आहे न तव्हांखे वाइट एश जो साबुण बि मिले थो फेस वॉश बि मिले थो त इहे ॿ चीज़ूं बि तव्हां लाज़मी वठिजो ठीकु आहे उन खां अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे लाइ अवेलेबल आहे ओके सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके माण्हू थोरो क्रीमनि खां अवॉइड कंदा आहिनि त बाबा असां क्रीम हणूं असांजी स्किन ते सूट करे अलाए न करे त जेके माण्हू थोरो कंफ्यूज़ हूंदा आहिनि या फिर जेके माण्हू चाहिनि था त असां कोई सुठो वारो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयूं त डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुलु तव्हांजे लाइ आहे वाइटमिन ई बीट सां तयारु कई वई आहे माइक्रो बीट फॉर्मुलेशन आहे जनाब तव्हांजी स्किन ते सिर्फ़ु ॿिनि रातिनि में रिज़ल्ट ॾियण वारो प्रोडक्ट आहे छा त ॻाल्हि कजे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे हिकिड़ो फील थींदो त बाबा वाक़ई असां अमीराणो प्रोडक्ट लॻायूं था सो तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिजो तव्हांखे यकीन ॾाढो भलो ई प्रोडक्ट लॻंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम आहे तव्हां बेशक राजे टाइम लॻायो उन सां गॾोगॾु तव्हांजे लाइ डी स्किन फेस वॉश बि मौजूदु आहे डी स्किन फेस वॉश आहे जेको हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयारु कयो वियो आहे तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट रखंदो ग्लोइंग रखंदो ऐं तव्हांजी स्किन हमेशह ग्लो कंदी रहंदी सो डी स्किन फेस वॉश लॻायो था उन सां गॾु डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो था इहे प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हांजे एरिया में अवेलेबल हुजणु लाज़मी आहिनि ज़रूरी आहिनि अगर ना ही अवेलेबल अन्या ताई थिया तो पोई तमा डायल कयो 03 15 799 0595

आज मुझे शदीद जो है ना वो ये डायलॉग याद आ रहा है, हाय मैं तो थक गई तो बस मैं थक गई और यहाँ पर आप लोगों से इजाजत लेती वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात जिका है मुझे सुभाने वाले प्रोग्राम में थियण वाली है 1 बजे का 3 बजे ताईं तमाम जो असांजो साथ हूंदा जनाब इन सोहणे प्रोग्राम में जिन जो नालो है व्हाइट एश एनजी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड आए बाबा तमाम ताईं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एनजी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जेके तमाम इस्तेमाल कंदा आयो सोहणा थींदा आयो अञा सोहणा थींदा आयो अञा वधीक सोहणा थींदा आयो सो इस्तेमाल कंदा हलो पंहिंजी खूबसूरती खे वधायो उन सां गॾु गॾु किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां पई को अहिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हायो जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे लाइ बि माज़रत मोकिलणी नाहे बाबू सिन सलामत सा सलामत अलाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर की सूरत हाल से पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के इजलास आज शाम तलब करे वक्त जरियन मौजूद पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सरबराई में आजाद कश्मीर की सूरत हाल से इजलास आज इस्लामाबाद में थी रहा है।

मौसमियात खाते सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकन ला हीट व्यू अलर्ट जारी कर छोड़ो। सिंध के कुछ जिलों में मौसम अज का 12 जून तक गर्म होंगी। मौसमियात खाते चवैत सकर शिकारपुर कंबर शिदादकोट जकमबाद दारकानो दादू नवाबशाह घोट की खैरपुरो सफोज जो पारो मामूल का 6 सेंटीग्रेड तक हों। मुख्तलिफ इलाकन में रात के वक्त भी गर्मी बरकरार रही। शहरी गर्मी में गैर जरूरी तौर से बाहर न निकरन। सिंध में जरी पानी की खोड़ 56 सैकड़ों तक पहुंची वही। कोटली बैराज से 56 सैकड़ों ए गुडू बैराज से 30 सैकड़ों खोड़ बरकरार। सखर बैराज से भी पानी की शदीद खोड़। आबादगार सारेलो बेजो पोखण लाए परेशान। गुडू बैराज जो मथा विकरो 75,000 ए हेठा विकरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज जो मथा विकरो 50,000 ए हेठा 18,500 क्यूसिक। कोटली बैराज वट मथा विकरो 11,000 क्यूसिक। डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ मुकम्मल तौर से बंद कर वो। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग। नौजवान कतल एक जख्मी। जामे चौक भरसा फायरिंग में 17 साल शिराज अहमद मारजी वो एक जणो सख्त जख्मी। पुलिस मारजी वर जो मर्ड ए जख्मी अस्पताल मुंतकिल कयो। जोईबर सा शाहानी बिरादरी के बिंदुन में झेड़ो। नौजवान कतल काछे के गोट दोस्त मोहम्मद शाहानी में मामूली गाल झेड़ दौरान फायरिंग सबब मोहम्मद रहीम उर्फ अमीर शाहानी कतल। पुलिस पहुंच बिन्नी दुरन में रेती खनन के मामले का झेड़ो थो। मारजी वाल नौजवान जो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले। हैदराबाद भरसा टालर जो कार के टक्कर वजना फौत 3 जख्मी। मसूब रुगड़ी भरसा निशन हावे के हादसे सबब कार में सवार फतेह मोहम्मद मरी अली मुस्तफा फौत। साजन अली मयर अली गुलाम मुर्जा कातियार जख्मी।

0: सिविल अस्पताल वारे इलाके जवाबदार अनवर माछी 60 साल मरियम माछी के मुबैना तौर से तशद्दुद बाद भुट्टा रही कतल कयो। इतलात पुलिस वाकई वारे अंदर पहुंची औरत जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। जवाबदार गिरफ्तार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खा इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खा रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधिक राबते जे लाए 0385-569-0300-338-5569।
5: माशाल्लाह फौजी पाइप फैक्ट्री, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहरापुर। असा वट जगह जो डारियो, जगह जा पावा आई पाइप, डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार

0: रानी रोड मेहरा पर राबते दिलाए 03201800003।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 385 569 0300 3855 69।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पीपीचा ट्रेवियर नून लीग जा 22 इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जा 15 पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11 JUI जा 8 266 आजाद उम्मीदवार मैदान में लथल। पीपीए नून लीग में चोटी के मुकाबले जा इम्कान पोलिंग सुबह 8 वगे का शाम जो 5 वगे तक बिना वक्फे के जारी है। 9,58,480 वोटर पैं वोट जो आइनी हक इस्तेमाल कंदा। आईजी गिलगित बल्तिस्तान जो चवण है सिक्योरिटी जा इंतजाम सख्त कया व्या 17,500 एहलकार सिक्योरिटी से मुकर हुंदा। हसास पोलिंग स्टेशन से इजाफी नफरी मुकर कई वेंदी। रेंजर्स ने पुलिस ने बया कानून लागू कर इदारा अलर्ट हुंदा। वफाकी गरु वजीर मोहसिन नकवी की तहरान में ईरानी पार्टी वजीर अब्बास इराकी से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी मौजूद मोहसिन नकवी अब्बास इराकी के सुप्रीम लीडर ला खसूसी खत डिनों। मोहसिन नकवी गुजरियल डी तहरान पहुंची ईरान के घरू वजीर से मुलाकात कई हुई।

0: सिंध में ज़रई पानी की खोड़ 56 सैकड़ों तक पहुंची वही। कोटली बैराज से 56 सैकड़ों और गुडू बैराज से 30 सैकड़ों खोड़ बरकरार। सखर बैराज से भी पानी की शदीद खोड़। आबादगार सारेलू वेझू पोखण लाइ परेशान। गुडू बैराज के मथाओं में 75,000 और हेठाओं में 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज के मथाओं में 50,000 और हेठाओं 18,500 क्यूसिक। कोटली बैराज वाले मथाओं में 11,000 क्यूसिक। डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ मुकम्मल तौर से बंद। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग। नौजवान कतल, एक जख्मी। जामे चौक बस से फायरिंग में 17 साल शिराज अहमद मारज वो, एक जणो जख्मी। पुलिस मारज जो मर्ड है, जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर छो। जोई भरसा शहानी बिरादरी के विंदर में झेड़ो। नौजवान कतल। काछे के गोट दोस्त मोहम्मद चाणी में मामूली गाल झेड़े दौरान फायरिंग सबब मोहम्मद रहीम उर्फ अमीर शहानी कतल। पुलिस मौजूद बिन्नी धुरन में रेती खड़ने के मामले तां झेड़ो थो। मारजीवल नौजवान जो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले। हैदराबाद भरसा टालर जो कार के टक्कर, बजरा फौत, 3 जख्मी। मसूब रुगड़ी भरसा नेशनल हाईवे के हादसे सबब कार में सवार फतेह मोहम्मद मरी ए अली मुस्तफा फौत, साजन अली ए महर अली गुलाम मुर्सा कांतियार जख्मी। नौंदम्बालो में पीएसएन औरत मुबैना तौर से तशद्दुद बाद घुटा डे कतल। सिविल अस्पताल वाले इलाके जवाबदार अनवर माची 60 साल मरियम माची के मुबैना तौर से तशद्दुद बाद घुटा डे कतल कयो। इतलात पुलिस वाके वाले हंध पहुंची, औरत जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो, जवाबदार गिरफ्तार। काजी अहमद भरसा जाल ए मुड़स के कतल जो जरगो। इल्जाम है तैलदुर के 1,96,00,000 रुपया दंड मुकरर। घोट अल्लाह डितो कल्याण में 1 साल अग कतल थियल मुर्तजा कल्याण ए संजाल मुनीरा के खून जो जरगो। रांझो कल्याण दुरते बिटे कतल जो 1,96,00,000 रुपया दंड मुकरर। जरगो जिलानी हाउस से आसिफ शाह जिलानी अली नवाज चांडो की सरपंची में थो। कड़ी खेरों में कौमी अवामी तहरीक के सदे बिजली की ड्री लोड शेडिंग खिलाफ सिंध बलोचिस्तान दंग से धरणो। ट्रैफिक मुअतल, गाड़ियों जो कतारू लगी पय। मुजाहरीन जो चवण है तो गढ़ी खेरो शहर तोड़े बहराड़ी में 20 कलाक लोड शेडिंग कई पई वे। सख्त गर्मी में बिजली की डिगी बंद सबब कारो वहां टुप ए जिंदगी मफलूज बनल है। बिजली की डिगी लोड शेडिंग जो खात्मो आने परेशानी खत्म कई वे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हानी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385569
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन।
1: आज़ाद कश्मीर जी सुप्रीम कोर्ट मुहाजरन जी सीटों जी हुकूमती मौकफ दुरुस्त करार ॾेई छॾियो। सुप्रीम कोर्ट राय ॾिनी त 12 मुहाजर सीटूं आर्टिकल 22 ए तहत आइनी तहफ़ुज़ रखनि थियूं। इंतज़ामी फैसलनि सां तब्दील नथो करे सघे। सीटुनि में तब्दीली लाइ आर्टिकल 33 ए तहत आइनी तरमीम आणणी पवंदी। मुहाजर सीटनि जो तारीख़ी बुनियाद 1960, 1964, 1970 जे कानून सां जुड़ियल आहे। सदर आज़ाद कश्मीर हुकूमती सलाह ते आइन जे आर्टिकल 46 ए तहत सदारती रेफरेंस दाख़िल कयो हो।

मौसमियात खाते सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकन ला हीट वे अलर्ट जारी कर छो। सिंध के कुछ जिले में मौसम अज का 12 जून तक गर्म होंगी। मौसमियात खाते है तो सखर शिकारपुर कंबर सिद्धार्थकोट जकबाद ए लाड़कानो दादू नवाबशाह घोट की खैरपुर शफरोज जो पारो मामूल का 6 सेंटीग्रेड तक हों। मुख्तु इलाकन में रात के वक्त भी गर्मी बरकरार रही। शहरी गर्मी में गैर जरूरी सफर तौर पर न निकरन।

सिंध में ज़रई पानी की खोड 56 सैकड़ो तक पहुंची पई। कोटली बैराज से 56 सैकड़ो, कुल्लू बैराज से 30 सैकड़ो खोड बरकरार। सखर बैराज से पानी की शदीद खोट, आबादकार सारेलू बेजो पोखण लाइ परेशान। गुडू बैराज के मथा विकरो 75,000 और हेठा विकरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज के मथा विकरो 50,000 और हेठा 18,500 क्यूसिक थी वो। कोटली बैराज मथा विकरो 11,000 क्यूसिक थी वो। डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ मुकम्मल तौर से बंद किया गया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरा पर असा वट जगह जो जारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी, राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
5: हाँ नहीं अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा।
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर,
8: मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर, मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 90।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर, आचर ऐं सूम

पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896।

माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जी सदारत हेठि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जी पार्लियामेंट्री कमेटी जो इजलास बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे आज़ाद कश्मीर जी सियासी सूरतहाल ते ब्रीफिंग डि॒नी वई। इजलास में आज़ाद कश्मीर जी सूरतहाल बाबति गौर वीचार कयो वेंदो। पाबंदी मंडियल तंजीम जे 9 जून वारे एहतजाज जे सॾु सबबि आज़ाद कश्मीर में मामूल ज़िंदगी मुतासिर। एहतजाज जे सॾु खे ॾिसंदे सिक्योरिटी हाई अलर्ट कई वई। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ जो चवण आहे त हाणे बि अवामी एक्शन कमेटी सां ॻाल्हियुनि ज़रिए रस्तो करणु घुर्जे, पर कानून हथ में खयो वियो त रियासत कानून मूजिबि मुंहुं ॾींदी। आज़ाद कश्मीर जे सुप्रीम कोर्ट मुहाजरनि जी सीटनि ते हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार ॾेई छॾियो। सुप्रीम कोर्ट राय ॾिनी त 12 मुहाजर सीटूं आर्टिकल 22A तहत आइनी तहफ़ुज़ रखनि थियूं। इंतज़ामी फैसलनि सां तब्दील नथो करे सघिजे। सीटनि में तब्दीली लाइ आर्टिकल 33A तहत आइनी तरमीम आणणी पवंदी। मुहाजर सीटनि जी तारीख़ी बुनियाद 1960, 1964, 1970 जे कानून सां जुड़ियल आहे। सदर आज़ाद कश्मीर हुकूमती सलाह ते आइन जे आर्टिकल 46A तहत सदारती रेफरेंस दाख़िल कयो हो। हुकूमत ऐं पीपल्स पार्टीअ विच में बजेट बाबति मुशावरो अॼु थियण जो इम्कान। सदर आसिफ अली ज़रदारी जी अॻवाणी में पीपल्स पार्टी जे वफ़द हुकूमती वफ़द सां मुलाकात कंदो। हुन खां अॻु सदर आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी जे ॻाल्हियुनि वारी कमेटीअ सां मुलाकात कंदो। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वॾो वज़ीर मुराद अली शाह, शेरी रहमान ऐं नबीद कमर शिरकत कंदा। पाकिस्तान जो खिते में अमन लाइ कोशिशूं जारी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी तहरान में ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राखीअ सां मुलाक़ात। ईरानी ख़बर एजेंसी मूजिबि मोहसिन नक़वी अब्बास राखीअ खे सुप्रीम डर लाइ ख़सूसी ख़त ॾिनो। मोहसिन नक़वी गुज़िरियल ॾींहुं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल जो पैगाम खणी तहरान पहुतो हो।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601100।
5: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 54 4 56 तौकीर अहमद 0306

ॿिया ॾींहं जेको आहे सो समूरा क्लिनिक ते हूंदा आहियूं ऐं अव्हां ख़बर आहे त जंहिंजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे बक़ाया दवाऊं जेको आहे सो मरीज़ खे स्टोर तां वठणी पवंदियूं आहिनि। क्लिनिक जो एड्रेस अव्हांखे ख़बर आहे त कोटड़ी रोड ते साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप मेहरापुर शहर में मौजूदु आहे। टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां जेकी रूटीन जे मुताबिक़ ख़बर आहे जेके असांजे प्रोग्राम में मौज़ूआत हूंदा आहिनि नंढियूं नंढियूं बीमारियूं या वॾियूं वॾियूं जेके बीमारियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में अवेयरनेस ॾियणु असांजे प्रोग्राम जो मक़सदु बि इहो ई हूंदो आहे त अवेयरनेस ॾींदा आहियूं त चाहे कहिड़ी बि बीमारी हुजे या उन जे मुतालिक़ ॼाण या उन जे मुतालिक़ कहिड़ा टोटका हूंदा आहिनि या जहिड़ो इलाजु हूंदो आहे उन जे बारे में ॾस वग़ैरह ॾींदा आहियूं। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं अॼुकल्ह तव्हां ॾिसंदा आहियो त ख़ासि तौर ते छो जो गुज़िरियल प्रोग्रामनि करण खां बाद में असांखे जेके फीडबैक मिलंदा आहिनि या वरी असां वटि SMS वग़ैरह ईंदा आहिनि त हिन बीमारी जे बारे में असांखे ज़रूरु अवेयरनेस ॾींदा त अहिड़े तरीक़े सां या उहे केस जेके असां ॾिसंदा आहियूं त रोज़मर्रा जे हिसाब सां क्लिनिक ते जेके वधीक पेशंट्स ईंदा आहिनि त सम्झंदा आहियूं त हिन बीमारीअ जी ॼाण हुजणु असांजे आवाम खे ज़रूरी आहे। अहिड़े तरीक़े सां मुंहिंजे क्लिनिक ते बि हींअर गुज़िरियल ॾींहंनि में जेके केसिस ज़्यादा ॾिसण में आया उहे इहे हूंदा आहिनि जेके अॼुकल्ह जेके खोड़ सारा पेशंट ईंदा आहिनि जिन खे ॾकिणीअ जी बीमारी हूंदी आहे, यानी ईअं सम्झो त जेके जिन जा आसाब कमज़ोर थी वेंदा आहिनि या जिन जे रगूं कमज़ोर थी वेंदियूं आहिनि। बेसिकली उहा बीमारी जेको आहे सो जे बारे में ॿुधाईंदासीं त उहा बीमारी छो थींदी आहे, उहा बीमारी खे छा चइबो आहे या उन बीमारी जेकॾहिं थी वञे त उन खां छा करणु घुरिजे। एक्चुअली इन बीमारी खे जेको मेडिकली नेम हूंदो आहे उनखे उहो चइबो आहे पार्किंसंस डिज़ीज़। पार्किंसंस डिज़ीज़ एक्चुअली हिकिड़ो जेको आहे सो अंग्रेज़ डॉक्टर हुयो जेम्स पार्किंसंस, उन जॾहिं उन ते तशख़ीस कई ऐं जेको आहे सो उन जे बारे में जॾहिं खोजना कई त इन खां पोइ हू उन में सफल वियो यानी कामयाब वियो त पोइ इन जे करे उन जे मान में उन बीमारी खे नालो बि उन्हनि जो उनजो हल कढियो, इन जे करे हुनजो नालो बि पार्किंसंस डिज़ीज़ रखियो वियो। एक्चुअली उनखे चइबो आहे यानी ॾकिणीअ जी बीमारी। ॾकिणी जी बीमारी ईअं थींदी आहे जेको जेकॾहिं सवली सिंधी में सम्झायूं त जेके दिमाग़ जा सेल्स हूंदा आहिनि उहे डेथ थियणु शुरू थी वेंदा आहिनि ऐं जेके असांजो न्यूरो ट्रांसमीटर हूंदो आहे जीअं असांजो डोपामीन जंहिंखे चऊं उहो केमिकल रिलीज़ करणु बंदि करे वेंदो आहे, यानी पोइ उन जे करे जेको आहे सो सेल्स जेको आहे सो कमु न कंदा आहिनि ऐं पोइ उन जे सेल्स डेथ थियण जे करे कमु न करण जे करे बीमारी इहा थींदी आहे जो ॾकिणी थी वेंदी आहे, जान में ॾकिणी रहंदी आहे, यानी जेके एसाब हूंदा आहिनि जिस्म जा उहे ढीला थी वेंदा आहिनि, पोइ जिस्म पाण ते कंट्रोल न करे सघंदो आहे। उहो कहिड़ी बि उमिरि में कंहिंखे बि थी सघे थी, उमिरि खे बि थी सघे थी, मर्द खे बि थी सघे थी। ऐं जॾहिं उहा बीमारी थी वेंदी आहे त तव्हां ॾिठो हूंदो त ख़ासि करे के ईअं बिल्कुलु वेठा हूंदा लेकिन जंहिं महिल लिखणु शुरू कंदा त उन्हनि जो हथु जेको आहे सो पंहिंजे कंट्रोल में न रहंदो आहे, उनजी पेन जेको आहे सो यानी सही तरीक़े सां लिखी न सघंदी आहे, यानी हुनजो हथु सही जेको आहे सो कमु न कंदो आहे, या जिन महिल ॻाल्हाईंदा आहिनि त हुनजो कंधु जेको आहे सो लॾंदो आहे, ऐं हलंदा आहिनि त वञिणो हिकिड़े पासे हूंदो आहे, माण्हू वेंदो ॿिए पासे हलियो वेंदो आहे। कॾहिं कॾहिं छो जो हुनजो मुख़्तलिफ़ टाइप्स हूंदा आहिनि, को पछाड़ीअ में ॻाल्हाइण में बि जेको आहे सो घणा हिब कंदा आहिनि, ॻाल्हाए बि सही न सघंदा आहिनि। सो इन ई बीमारीअ खे जेको आहे सो पार्किंसंस डिज़ीज़ चयो वेंदो आहे छो जो हिस्ट्री तमामु घणी आहे। हीउ हिकिड़ो नंढो प्रोग्राम हूंदो आहे जेको छो जो कॉल्स बि असांखे वठणी हूंदियूं आहिनि ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो मक़सदु सिर्फ़ु इहो हूंदो आहे आवाम ताईं इहा ॻाल्हि पहुचाइणी हूंदी आहे त हीअ बीमारी छो थींदी आहे, जेकॾहिं थी वञे त हिन जो हल कहिड़ो आहे। इन जो हल इहो ई आहे त मेडिकल में हिन जी ट्रीटमेंट घणा दोस्त जेके वीचारा पेशंट्स हज़रात हूंदा आहिनि कराए ईंदा आहिनि, लेकिन सालहा साल 10-10 साल 20-20 साल इन मर्ज़ में रहंदा आहिनि वीचारा, ठीकु न थी सघंदा आहिनि। अलहमदिल्ला अलाह ताला जा करोड़े अहसान आहिनि ऐं अलाह ताला जी ज़ाती शिफ़ा ॾियण वारी आहे छो जो कंहिं बि डॉक्टर जे हथ में कुझु बि न हूंदो आहे, इन जे करे असांजे हथ में बि कुझु न हूंदो आहे, अलाह ताला जी ज़ात जेको आहे सो शिफ़ा ॾियण जी हूंदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां होम्योपैथिक में अहिड़ियूं दवाऊं मौजूदु आहिनि जेके असां पेशंट्स खे जॾहिं इस्तेमालु कराईंदा आहियूं ॾींदा आहियूं, अल्ला ताला जी महिरबानी सां उहो पेशंट जेको आहे सो आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुलु उन में रिकवरी ईंदी वेंदी आहे। उहो पेशंट जेको 10 सालनि खां 20 सालनि खां वठी जेको ॾकिणी जी बीमारी में हूंदो आहे

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेक बुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े हैं बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेक बुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307 3592120

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार। क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी जी पथरी मसाने जी कामयाबी थो गुर्दन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटो होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ
2: 0302018-003
3: अदा नओं दुकान खोलियो अथऊं छा कजे
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
3: न अदा
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
2: हा दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे
3: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-3

मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुझी सकंदा नेब मलीर में हजारे एकड़ जमीन के गैर कानूनी अलाटमेंट की जांच शुरू कर छी रेवेन्यू खाते का रिकॉर्ड तलब सिंध में मैट्रिक जा नतीजा 10 जुलाई इंटर जा 31 जुलाई तक जारी करने जो फैसलो सूबाई वजीर इस्माइल राहो की सदारत हेठ तालीमी बोर्ड जो इजलास 1 करोड़ का वधीक इनाम रखल बदनाम धाड़ेल मेलो तेगानी सूधो 60 डुहारी पुलिस वट पेश शिकारपुर पुलिस लाइन में सिलेंडर पॉलिसी तहत 60 का वधीक कचे जे डुहारे हथियार फिटा गया सिंध जे जेलन में गुंजाइश का वधीक कैदी वाड़ियल 14,128 जे गुंजाइश अंग 26,959 ते पहुंची वयो अज का सजे मुल्क में सख्त गर्मी हीट व्यू जो खतरो मौसमियात खाते आगाह कर छो सिंध में पानी खोट 40% थी वही वाहन के फराहमी में 34% तई कटौती स्पेशल रिपोर्ट में अवाम बुझी सकंदा सालियानी बजट अवामी मुफाद नेब कराची मलीर जिले में हजारे एकड़ सरकारी जमीन के गैरकानूनी अलाटमेंट वाले मामले की जांच शुरू कर छी है अगूणे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह बासर शख्स ए जी मजीद खालिद यूसुफ जई अमाद दीन चाचड़ समेत बेन के खिलाफ जांच शुरू कदे रेवेन्यू खाते का रिकॉर्ड तलब कर वरतो है उन हवाले से वरतल जान मुताबिक कराची के जिले मलीर के वे पैमाने से गैरकानूनी जमीन की अलाटमेंट कई वही है रेवेन्यू खाते तोड़े लैंड यूटिलाइजेशन खाते जहा कामोरा मुलविस उन्होंने खिलाफ का भी असरायती कार्रवाई वे अरसे का ना थी सकी नेब कराची पारा मलीर जिले में हजारे एकड़ सरकारी जमीन के गैरकानूनी अलाटमेंट कर जाली एंट्रीज रखने वाले मामले की जांच शुरू कर छी है उन सिलसिले में रेवेन्यू खाते के इख्तियार के खत लिखो वो बुधाया वो है मलीर के ताल के मुराद मेमण में गैरकानूनी जमीन की अलाटमेंट वे मामले की जांच शुरू कई वही है ताल के मुराद मेमण के मुख्तियारकार के खत लिखी जाना वो है तो बुधाया वे 117 एंट्रीज केंजे नालन से उन जमीन की अलाटमेंट कदें थी कड़े आफिसर उन जमीन की अलाटमेंट कई है उ जमीन कड़े मानून के नाले से है उन जमीन की हाँ स्टेटस है समूर गुर्बल रिकॉर्ड तलब किया वो है हजारे एकड़ सरकारी जमीन की गैरकानूनी अलाटमेंट वाली लिस्ट भी रेवेन्यू खाते के मोकली वही उन मुताबिक मलीर जिले के देह टोड़ में 323 एकड़ अतहर अली नाले शख्स के अलाट कर उन नाले से एंट्री रखने वाले मामले जो रिकॉर्ड दिखो वो सिंधु हुकूमत मैट्रिक इंटरमीडिएट के नतीजन के तारीखों जो ऐलान कर छो है यूनिवर्सिटीज तालीमी बोर्ड के सूबाई वजीर इस्माइल राहो की सदारत हेठ सभी तालीमी बोर्डन जो इजलास थो जै दौरान सिंध में मैट्रिक इंटरमीडिएट के सालियानी इम्तिहान जो जायजो वरतो वो इस्माइल राहू चो तो सिंध के सभी डिवीजनों में मैट्रिक जहा नतीजा 10 जुलाई तई इंटरमीडिएट जहा नतीजा 31 जुलाई तई जारी क्या वा नतीजा मुकर वक्त से जारी क्या वन तो जी शागिर्दन के वक्त सुर दाखिला में सहूलत मिले इन तालीमी बोर्डन में शफाफियत मेरिट इम्तिहानी निज़ाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन सहकार फराहम किया वो इजलास दौरान वजीर के दिनल ब्रीफिंग में बुधाया वो तालीमी बोर्ड नाए 11 जमायत जहा नतीजा 31 अगस्त तई जारी कर छींदी सिंधु हुकूमत के सिलेंडर पॉलिसी तहत कचे के 102 केसन में घुर्बल 1 करोड़ रुपया इनामी याफ्ता बदनाम डुहारी बेलो तेगानी समेत 60 का वधीक घुर्बल खतरनाक डुहारिन पुलिस लाइन शिकारपुर में हथियार फिटा करे कानून आदो पेश थिया उन मौके ते एसएसपी शिकारपुर कलीम मलक प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे सिलेंडर कदर डुहारिन के मीडिया आदो पेश कयो सिलेंडर पॉलिसी बाबत तफसीली ब्रीफिंग दिनी एसएसपी कलीम मलक चयो त सिलेंडर कदड़ डुहारिन में 1 करोड़ रुपया इनाम याफ्ता बिलो तेगानी 50-50 लख रुपया इनाम याफ्ता अलीगुल तेगानी मंजूर जाफरी अलहयार नंदवानी 40 लख रुपया इनाम याफ्ता अब्दुल रहमान तेगानी 30 लख रुपया इनाम याफ्ता मोहरम तेगानी जडे त 20-20 लख रुपया इनाम याफ्ता वहीद सब्जोई मीर शर सुल्तान बिजारानी बशीर भयो बिया केतरा ही घुर्बल डुहारी शामिल आन जिन खिलाफ कतुल अगवा फुर धाड़ा पुलिस मुकाबलन बेन संगीन नोयत के दोहन जहा केस दाखिल इन चो सिंधु हुकूमत पारा शुरू कल सिलेंडर पॉलिसी जहा मुस्बत नतीजा सामू अची रहा मुख्तलिफ केसन में घुर्बल डुहारिन के कानून जो आडो पेश थे जिले में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम है
संदसि ख़िलाफ़ दाख़िल केसनि मूजिबि कानूनी कार्रवाई जारी रहंदी ऐं खेनि अदालत आॾो पेश कयो वेंदो। दोहरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रखियूं वेंदियूं। हुन ॿुधायो त कुझु कबीलाई तकरारनि सबबि मुख़्तलिफ़ ज़ातियुनि सां तालुक़ु रखंदड़ कुझु घुरबल ॾोहारी अञा ताईं सिरेंडर न करे सघिया आहिनि, जॾहिं त ईंदड़ फेज़ टे में वधीक ॾोहारियुनि जे हथियार फिटा कया वेंदा। सिंध जी जेलनि में गुंजाइश खां वधीक 12,700 कैदी वाड़ियल, 14,128 जी गुंजाइश अंगु 26,959 ते पहुतो। रिपोर्ट मूजिब कराची जी सेंट्रल जेल में 2400 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 7,985 कैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल हैदराबाद में 1527 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 3009 कैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल लाड़काणे में 650 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 963 कैदी वाड़ियल आहिनि। वुमेन जेल सखर में 20 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 75 औरतूं क़ैद आहिनि। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 2200 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 5644 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल नारा हैदराबाद में 300 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 547 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शहीद बेनिदराबाद में 100 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 352 कैदी वाड़ियल आहिनि। लाड़काणे डिस्ट्रिक्ट जेल में 150 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 449 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल दादूअ में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 417 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल बदीन में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, ऐं उते 319 कैदी मौजूदु आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, त उते 440 कैदी मौजूदु आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल नौशहर फिरोज में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, त उते 546 कैदी वाड़ियल आहिनि। मजमूई तौर ते सिंध जे 23 जेलनि में 14,128 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 26,959 कैदी वाड़ियल आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में 438 औरतूं ऐं 312 ॿार कैदी आहिनि, जंहिं मां 68 औरतुनि ते ॾोहु साबित थी चुको आहे। हिकु औरत खे मौत जी सज़ा मिलियल आहे, जॾहिं त 368 औरतुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में क़ैद 312 ॿार कैदियुनि मां 8 ते ॾोहु साबित थी चुको आहे, जॾहिं त 303 कैदियुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध में पाणी खोट 40% खां वधीक थी वई आहे। ईंदड़ 10 ॾींहनि में 50% खां वधण जा इम्कान यकीनी बणिजी विया आहिनि। वावडा ऐं अरसा पारां डेमनि मां पाणी भरण जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। काल्ह मुल्क जा पाणी ज़खीरा 4 मिलियन एकड़ फुट ताईं कढिया विया। सिंध जी बैराजनि मां गुडू बैराज ते पाणीअ जी खोट 28%, सखर बैराज ते 38% ऐं कोटड़ी बैराज वटि 57% वधी वई आहे। सखर बैराज वटां कीर्थर केनाल में 51, राइस केनाल में 39, दादू केनाल में 83, नारा केनाल में 17, खैरपुर वेस्ट 35, रोहिड़ी केनाल 34 ऐं खैरपुर वेस्ट केनाल में 44% खोट थी वई आहे। कोटड़ी बैराज वटि पाणी आमद 11,645 क्यूसिक आहे ऐं घुर्ज 26,900 आहे। कोटड़ीअ वटां कलेरी फीडर में 52, अक्रमवाह में 58, ओल्ड फुलेलीअ में 49 ऐं न्यू फुलेलीअ में 63% खोट थी वई आहे। गुडू बैराज ते BS फीडर में 49, पट फीडर में 14 ऐं घोटकी फीडर में 12% पाणी घुर्ज खां घटि आहे। सी जी केनाल मां कट वधाए 16,500 क्यूसिक कई वई आहे ऐं HTP केनाल वसीले बि तौसा बैराज मां 11,894 क्यूसिक पाणी खयो पियो वञे। काल्ह मंगला डेम में पाणी आमद 43,102 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई ऐं कट 39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई। तरबेला डेम में पाणी आमद 1,28,400 क्यूसिक ऐं हेठां वहिकिरो 1,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। काल्ह गुडू बैराज जो मथां वहिकिरो 75,002, सखर बैराज जो मथां वहिकिरो 50,620 ऐं कोटड़ी बैराज जो मथां वहिकिरो 11,645 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। अॼु खां सॼे मुल्क में सख़्तु गर्मी हीट वेव जो ख़तरो मौसमियात खाते आगाह करे छॾियो आहे। 7 जून खां 12 जून ताईं गर्मी जी लहर जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते अलर्ट जारी कयो आहे। अलर्ट मूजिबि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, चहलम, गुजरात, सियालकोट 8 जून खां 11 जून ताईं गर्मी जी लपेट में रहंदा। नारेवाल, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, छंग, टोबा, टेकसिंग, सरगोधा, मियांवाली, खुशा, बखर में भी हीट वेव जो इम्कान आहे। अलर्ट मूजिबि लैया, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, मुज़फ़रगढ़, राजनपुर पिण मुतासिर थींदा। मौसमियात खाते मूजिबि गर्मी पद मामूल खां 4 खां 6 डिग्री सेंटीग्रेड वधीक रहण जो इम्कान आहे ऐं 7 खां 12 जून ताईं गर्मी पद 44 खां 48 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो।
8 खां 12 जून ताईं कराची में मौसम सख़्त गर्म रहण जो इम्कान आहे ऐं गर्मी पदु 40 खां 43 डिग्री सेंटीग्रेड जे विच में रहंदो। 12 जून ताईं सिंध ऐं बलोचिस्तान जे कुझु ज़िलनि में गर्मी पदु 48 खां 51 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो, जॾहिं त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मैदानी इलाइक़नि में गर्मी पदु 41 खां 46 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं वञी सघे थो। मौसमियात खाते शहरनि खे अपील कई आहे त गर्मी तेज़ हुजण सबबि पंहिंजे ॿारनि जो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंधुअ जे सरज़मीन खां वठी जबलनि जे माथिरियुनि ताईं जॾहिं बि बजट जी मौसम अचे थी, तॾहिं रुगो वज़ीर जा दफ़्तर या इक़्तदार जा ऐवान ई जाॻी नथा पवनि, पर हिकु मज़दूर जी चुल, हिकु उस्ताद जी उमेद, हिकु क्लार्क जो हिसो, हिकु पेंशनर जो थकल निगाह ऐं हिकु ग़रीब माउ जो रधणो बि कंहिं अणॾिठल इंतज़ार में बीह रहंदो आहे। हर साल वांगुरु हिन साल बि क़ौम जे दिलि में उहो ई सवाल धड़की रहियो आहे त छा ईंदड़ बजट आवाम ऐं मुलाज़मनि जे लाइ आसानीअ जो पैगाम आणींदी या वरी सब्र जे सलेब ते लटकाइण वारो नओं फ़रमान साबित थींदो। पाकिस्तान जी मौजूदा इक़्तिसादी हालति कंहिं अहिड़े मुसाफ़िर वांगुरु आहे जेको कर्ज़नि जे बैठक में बीठो रहियो आहे। हिकु हथ में उमेद ऐं ॿिए हथ में कर्ज़नि जी ज़ंजीर। मुल्क अञा बि आलमी कर्ज़ ॾींदड़ इदारनि जे निगरानीअ हेठि आहे। हुकूमत खे सख़्त माली हदबंदियुनि अंदरि रहंदे बजट ठाहिणी पइजी रही आहे, जिते ख़र्च घटाइण, टैक्स वधाइण ऐं ख़सारो क़ाबू करणु बुनियादी शर्त बणियल आहे। हाणे सवाल उहो थो उभरे त अहिड़े माहौल में अवामी मुफ़ाद वारी बजट केतिरी हद ताईं मुमकिन आहे। मुशाहिदे मूजिबि पाकिस्तान जे सियासी तारीख़ ॿुधाए थी त चूंडुनि खां परे बीठल हुकूमतूं घणो करे अहिड़ियूं बजटूं आणींदियूं आहिनि जिन में अवामी रिलीफ खां वधीक माली नज़्मो ज़ब्त खे तरजीह ॾिनी वेंदी आहे। सरकारी मुलाज़मनि बाबति सूरतहाल वधीक पेचीदा ॾिसण में अचे थी। हिकु पासे हुकूमती हल्क़नि में अहिड़ियूं तजवीज़ूं ज़ेरे गौर आहिनि जिन में 5% खां 10% ताईं एडहाक रिलीफ पघारुनि में मामूली वाध या कुझु अलाउंस में तब्दीली शामिल आहे, त ॿिए पासे अहिड़ियूं रिपोर्टूं बि आहिनि जिन मूजिबि हुकूमत पघारुनि में वाध बदिरां टैक्स में कुझु रिलीफ ॾिए मुलाज़मनि खे मुतमिन करण जो रस्तो इख़्तियार करे सघे थी। पर हिते हिकु तलख हक़ीक़त बि लिकियलु आहे। जेकॾहिं पघार सिर्फ़ 5 या 7% वधंदी, जॾहिं मार्केट में महांगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, तालीम ऐं दवाउनि जा अघ वधीक तेज़ीअ सां वधंदा रहंदा, त अहिड़ी वाध मुलाज़मनि जे लाइ रिलीफ न पर अंगनि जो फरेब महसूसु थींदी। तारीख़ शायदि आहे त जॾहिं बि हुकूमतुनि वटि माली वसीलनि जी खोट थी, तॾहिं आम माण्हूअ जे खीसे ते ख़ामोश टैक्स विधो वियो। पेट्रोल महांगो थियो, ट्रांसपोर्ट महांगी थी, भाॼी, अटो, खंडु, दवाऊं ऐं तालीम सभु कुझु अवाम जे वस खां परे थींदो वियो। अॼु बि उहो ख़दशो मौजूदु आहे त जेकॾहिं आलमी इदारनि जूं शर्तूं सख़्त रहियूं त हुकूमत रिलीफ बदिरां रेवन्यू गॾु करण खे तरजीह ॾेई सघे थी। ज़माने जे तलख तजुर्बे मां एतिरो ज़रूरु चई सघिजे थो त पाकिस्तान जूं बजटूं घणो करे उमेद ऐं मायूसीअ जे विच वारी सरह ते जनम वठंदियूं आहिनि। मौजूदा निशानियुनि खे ॾिसंदे ईअं लॻे थो त हीअ बजट शायदि मुकमल तौरु अवामी या मुलाज़िम दोस्त न हुजे, पर हुकूमत कोशिशि कंदी त घटि में घटि एतिरो रिलीफ ज़रूरु ॾिए जो नाराज़गीअ जी बाहि वॾे तूफ़ान में तब्दील न थिए। बाक़ी हक़ीक़ी फ़ैसिलो हमेशह वांगुरु बाज़ारि, बिजलीअ जे बिल ऐं घर जो रधणो कंदो।

0: केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहाँ मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे, सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर, राबते जे लाए 03201800003।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-3883-8556।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
5: Yeah!

0: मेरा वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: iron store Halani, wholesale depot, a name to be trusted.
1: Sariya, Garder, Tier, Engel, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silver Jar Chong, Cement, Reti, Kresh, Ai Rang Vagera, Bazar Kham Bariya, Dastyab Ain.
0: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
1: Rabte Lai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-04372, Ai 0242-460100.
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 0301-380-8347।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तव्हां ॿुधो पिया जी एफ एम नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु मां आहियां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा नेब मलीर में हजारे एकड़ जमीन जी गैर कानूनी अलॉटमेंट जी जांच शुरू करे छड़ी रेवेन्यू खाते खां रिकॉर्ड तलब सिंध में मैट्रिक जा नतीजा 10 जुलाई इंटर जा 31 जुलाई तीन जारी करण जो फैसलो सूबाई वजीर इस्माइल राहो की सदारत हेठ तालीमी बोर्ड जो इजलास एक करोड़ का वधीक इनाम रखल बदनाम धाड़ेल मेलो तेगानी सूदो सठ डुहारी पुलिस वट पेश शिकारपुर पुलिस लाइन में सिलेंडर पॉलिसी तहत सठ का वधीक कचे के डुहारी हथियार फिटा गया सिंध के जेलन में गुंजाइश का वधीक कैदी वाड़ियल 14128 के गुंजाइश अंग 26959 ते पहुंची वयो अज का सजे मुल्क में सख्त गर्मी हीट व्यू जो खतरो मौसमियात खाते आगाह कर छो सिंध में पानी खोट 40 सैकड़ो थी वही वाहन के फराहमी में 34 सैकड़ो तई कटौती स्पेशल रिपोर्ट में अवाम बुझी सकंदा सालियानी बजट अवामी मुफाद नेब कराची मलीर जिले में हजारे एकड़ सरकारी जमीन के गैरकानूनी अलॉटमेंट वाले मामले की जांच शुरू कर छी है अगूणे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह बासर शख्स ए जी मजीद खालिद यूसुफ जई अमाद दीन चाचड़ समेत बेन के खिलाफ जांच शुरू कदे रेवेन्यू खाते का रिकॉर्ड तलब कर वरतो है उन हवाले से वरतल जान मुताबिक कराची के जिले मलीर के वे पैमाने से गैरकानूनी जमीन की अलॉटमेंट कई वही है रेवेन्यू खाते तोड़े लैंड यूटिलाइजेशन खाते जहा कामोरा मुलविस उन्होंने खिलाफ का भी असरायती कार्रवाई वे अरसे का ना थी सकी नेब कराची पारा मलीर जिले में हजारे एकड़ सरकारी जमीन के गैरकानूनी अलॉटमेंट कर जाली एंट्रीज रखने वाले मामले की जांच शुरू कर छी है उन सिलसिले में रेवेन्यू खाते के इख्तियार के खत लिखो वो बुधाया वो है मलीर के तहलके मुराद मेमण में गैरकानूनी जमीन की अलॉटमेंट वे मामले की जांच शुरू कई वही है तालके मुराद मेमण के मुख्यारकार के खत लिखी जाना वो है तो बुधाया वे 117 एंट्रीज कंजे नालन से उन जमीन की अलॉटमेंट कदें थी कड़े आफिसर उन जमीन की अलॉटमेंट कई है उ जमीन कड़े मानून के नाले से है उन जमीन की हाँ स्टेटस है समूर गुर्बल रिकॉर्ड तलब किया वो है हजारे एकड़ सरकारी जमीन की गैरकानूनी अलॉटमेंट वाली लिस्ट भी रेवेन्यू खाते के मोकली वही उन मुताबिक मलीर जिले के दह टोड़ में 323 एकड़ अतहर अली नाले शख्स के अलॉट कर उन नाले से एंट्री रखने वाले मामले जो रिकॉर्ड दिखो वो सिंध हुकूमत मैट्रिक इंटरमीडिएट के नतीजन के तारीखों जो ऐलान कर छो है यूनिवर्सिटीज तालीमी बोर्ड के सूबाई वजीर इस्माइल राहो की सदारत हेठ सभी तालीमी बोर्डन जो इजलास थो जै दौरान सिंध में मैट्रिक इंटरमीडिएट के सालियानी इम्तिहान जो जायजो वरतो वो इस्माइल राहू चो तो सिंध के सभी डिवीजनों में मैट्रिक जहा नतीजा 10 जुलाई तई इंटरमीडिएट जहा नतीजा 31 जुलाई तीन जारी क्या वा नतीजा मुकर वक्त से जारी क्या वन जी शागिर्दन के वक्त सुर दाखिला में सहूलत मिले इन तालीमी बोर्डन में शफाफियत मेरिट इम्तिहानी निज़ाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन सहकार फराहम किया वो इजलास दौरान वजीर के दिनल ब्रीफिंग में बुधाया वो तालीमी बोर्ड नाए 11 जमायत जहा नतीजा 31 अगस्त तीन जारी कर छी सिंध हुकूमत के सिलेंडर पॉलिसी तहत कचे के 102 केसन में घुर्बल 1 करोड़ रुपया इनामी याफ्ता बदनाम डुहारी बेलो तेगानी समेत 60 का वधीक घुर्बल खतरनाक डुहारिन पुलिस लाइन शिकारपुर में हथियार फिटा करे कानून आडो पेश थिया उन मौके ते एसएसपी शिकारपुर कलीम मलक प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे सिलेंडर कंदर डुहारिन के मीडिया आडो पेश कयो सिलेंडर पॉलिसी बाबत तफसीली ब्रीफिंग दिनी एसएसपी कलीम मलक चयो त सिलेंडर कंदड़ डुहारिन में 1 करोड़ रुपया इनाम याफ्ता बिलो तेगानी 50-50 लख रुपया इनाम याफ्ता अलीगुल तेगानी मंजूर जाफरी अलहयार नंदवाणी 40 लख रुपया इनाम याफ्ता अब्दुल रहमान तेगानी 30 लख रुपया इनाम याफ्ता मोहरम तेगानी जडे त 20-20 लख रुपया इनाम याफ्ता वहीद सब्जोई मीर शर सुल्तान बिजारानी बशीर भयो बिया केतरा ही घुर्बल डुहारी शामिल आन जिन खिलाफ कतुल अगवा फुर धाड़ा पुलिस मुकाबलन बेन संगीन नोयत के डोहन जहा केस दाखिल इन चो तो सिंध हुकूमत पारा शुरू कल सिलेंडर पॉलिसी जहा मुस्बत नतीजा सामू अची रहा मुख्तलिफ केसन में घुर्बल डोहारिन के कानून जो
आडो पेश थियण ज़िले में अमन अमान जी सूरतहाल बेहतर बनाइण जे लाइ हिकु अहम क़दम आहे। संस ख़िलाफ़ दाख़िल केसनि मूजिबि कानूनी कार्रवाई जारी रहंदी ऐं खेनि अदालत आडो पेश कयो वेंदो। दोहरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रखियूं वेंदियूं। हुन ॿुधायो त कुझु कबीलाई तकरारनि सबबि मुख़्तलिफ़ ज़ातियुनि सां तालुक़ु रखंदड़ कुझु घुरबल ॾोहारी अञा ताईं सिलेंडर न करे सघिया आहिनि, जॾहिं त ईंदड़ फेज़ टे में वधीक ॾोहारनि जे हथियार फिटा कया वेंदा। सिंध जी जेलनि में गुंजाइश खां वधीक 12,700 कैदी वाड़ियल, 14,128 जी गुंजाइश अंग 26,959 ते पहुतो। रिपोर्ट मूजिब कराची जी सेंट्रल जेल में 2400 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 7,985 कैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल हैदराबाद में 1527 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 3009 कैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल लाड़काणे में 650 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 963 कैदी वाड़ियल आहिनि। वुमेन जेल सखर में 20 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 75 औरतूं क़ैद आहिनि। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 2200 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 5,644 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल नारा हैदराबाद में 300 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 547 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शहीद बेनिंदराबाद में 100 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 352 कैदी वाड़ियल आहिनि। लाड़काणे डिस्ट्रिक्ट जेल में 150 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 449 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल दादूअ में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 417 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल बदीन में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, ऐं उते 319 कैदी मौजूदु आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, त उते 440 कैदी मौजूदु आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल नौशहर फिरोज में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, त उते 546 कैदी वाड़ियल आहिनि। मजमूई तौर ते सिंध जे 23 जेलनि में 14,128 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 26,959 कैदी वाड़ियल आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में 438 औरतूं ऐं 312 ॿार कैदी आहिनि, जंहिं मां 68 औरतुनि ते ॾोहु साबित थी चुको आहे। हिकु औरत खे मौत जी सज़ा मिलियल आहे, जॾहिं त 368 औरतुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में क़ैद 312 ॿार कैदियुनि मां 8 ते ॾोहु साबित थी चुको आहे, जॾहिं त 303 कैदियुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध में पाणी खोट 40% खां वधीक थी वई आहे। ईंदड़ 10 ॾींहनि में 50% खां वधण जा इम्कान यकीनी बणिजी विया आहिनि। वावडा ऐं अरसा पारां डेमनि मां पाणी भरण जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। काल्ह मुल्क जा पाणी ज़खीरा 4 मिलियन एकड़ फुट ताईं कढिया विया। सिंध जी बैराजनि मां गुडू बैराज ते पाणीअ जी खोट 28%, सखर बैराज ते 38% ऐं कोटड़ी बैराज वटि 57% वधी वई आहे। सखर बैराज वटां कीर्थर केनाल में 51, राइस केनाल में 39, दादू केनाल में 83, नारा केनाल में 17, खैरपुर वेस्ट 35, रोहिड़ी केनाल 34 ऐं खैरपुर वेस्ट केनाल में 44% खोट थी वई आहे। कोटड़ी बैराज वटि पाणी आमद 11,645 क्यूसिक आहे ऐं घुर्ज 26,900 आहे। कोटड़ीअ वटां कलेरी फीडर में 52, अक्रमवाह में 58, ओल्ड फुलेलीअ में 49 ऐं न्यू फुलेलीअ में 63% खोट थी वई आहे। गुडू बैराज ते BS फीडर में 49, पट फीडर में 14 ऐं घोटकी फीडर में 12% पाणी घुर्ज खां घटि आहे। सी जी केनाल मां कट वधाए 16,500 क्यूसिक कई वई आहे ऐं HTP केनाल वसीले बि तौसा बैराज मां 11,894 क्यूसिक पाणी खयो पियो वञे। काल्ह मंगला डेम में पाणी आमद 43,102 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई ऐं कट 39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई। तरबेला डेम में पाणी आमद 1,28,400 क्यूसिक ऐं हेठां वहिकिरो 1,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। काल्ह गुडू बैराज जो मथां वहिकिरो 75,002, सखर बैराज जो मथां वहिकिरो 50,620 ऐं कोटड़ी बैराज जो मथां वहिकिरो 11,645 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। अॼु खां सॼे मुल्क में सख़्तु गर्मी हीट वेव जो ख़तरो मौसमियात खाते आगाह करे छॾियो आहे। 7 जून खां 12 जून ताईं गर्मी जी लहर जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते अलर्ट जारी कयो आहे। अलर्ट मूजिबि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, चहलम, गुजरात, सियालकोट 8 जून खां 11 जून ताईं गर्मी जी लपेट में रहंदा। नारेवाल, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, शंग, टोबा, टेक्सिंग, सरगोधा, मियांवाली, खुशाब, बखर में बि हीट वेव जो इम्कान आहे। अलर्ट मूजिबि लैया, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, मुज़फ़रगढ़, राजनपुर पिण मुतासिर थींदा। मौसमियात खाते मूजिबि गर्मी पद मामूल खां 4 खां 6 डिग्री सेंटीग्रेड वधीक रहण जो इम्कान आहे ऐं 7 खां 12 जून ताईं गर्मी पद 44 खां 48 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो।
8-12 जून ताईं कराची में मौसम सख़्त गर्म रहण जो इम्कान आहे ऐं गर्मी पदु 40-43 डिग्री सेंटीग्रेड जे विच में रहंदो। 12 जून ताईं सिंध ऐं बलोचिस्तान जे कुझु ज़िलनि में गर्मी पदु 48-51 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो, जॾहिं त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मैदानी इलाइक़नि में गर्मी पदु 41-46 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं वञी सघे थो। मौसमियात खाते शहरनि खे अपील कई आहे त गर्मी तेज़ हुजण सबबि पंहिंजे ॿारनि जो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु जे सरज़मीन खां वठी जबलनि जे माथिरियुनि ताईं जॾहिं बि बजट जी मौसम अचे थी, तॾहिं रुगो वज़ीर जा दफ़्तर या इक़्तदार जा ऐवान ई जाॻी नथा पवनि, पर हिकु मज़दूर जी चुल्ह, हिकु उस्ताद जी उमेद, हिकु क्लार्क जो खीसो, हिकु पेंशनर जो थकल निगाह ऐं हिकु ग़रीब माउ जो रधणो बि कंहिं अणॾिठल इंतज़ार में बीह रहंदो आहे। हर साल वांगुरु हिन साल बि क़ौम जे दिलि में उहो ई सवाल धड़की रहियो आहे त छा ईंदड़ बजट आवाम ऐं मुलाज़मनि जे लाइ आसानीअ जो पैगाम आणींदी या वरी सब्र जे सलेब ते लटकाइण वारो नओं फ़रमान साबित थींदो। पाकिस्तान जी मौजूदा इक़्तसादी हालति कंहिं अहिड़े मुसाफ़िर वांगुरु आहे जेको कर्ज़नि जे बैठक में बीठो रहियो आहे। हिकु हथ में उमेद ऐं ॿिए हथ में कर्ज़नि जी ज़ंजीर। मुल्क अञा बि आलमी कर्ज़ ॾींदड़ इदारनि जे निगरानीअ हेठि आहे। हुकूमत खे सख़्त माली हदबंदियुनि अंदरि रहंदे बजट ठाहिणी पइजी रही आहे, जिते ख़र्च घटाइण, टैक्स वधाइण ऐं ख़सारो क़ाबू करणु बुनियादी शर्त बणियल आहे। हाणे सवाल उहो थो उभिरे त अहिड़े माहौल में अवामी मुफ़ाद वारी बजट केतिरी हद ताईं मुमकिन आहे। मुशाहिदे मूजिबि पाकिस्तान जे सियासी तारीख़ ॿुधाए थी त चूंडुनि खां परे बीठल हुकूमतूं घणो करे अहिड़ियूं बजटूं आणींदियूं आहिनि जिन में अवामी रिलीफ़ खां वधीक माली नज़्मो ज़ब्त खे तरजीह ॾिनी वेंदी आहे। सरकारी मुलाज़मनि बाबति सूरतहाल वधीक पेचीदा ॾिसण में अचे थी। हिकु पासे हुकूमती हल्क़नि में अहिड़ियूं तजवीज़ूं ज़ेरे गौर आहिनि जिन में 5% खां 10% ताईं एडहाक रिलीफ पघारुनि में मामूली वाद या कुझु अलाउंस में तब्दीली शामिल आहे, त ॿिए पासे अहिड़ियूं रिपोर्टूं बि आहिनि जिन मूजिबि हुकूमत पघारुनि में वाद बदिरां टैक्स में कुझु रिलीफ़ ॾिए मुलाज़मनि खे मुतमिन करण जो रस्तो इख़्तियार करे सघे थी। पर हिते हिकु तलख हक़ीक़त बि लिकियलु आहे। जेकॾहिं पघार सिर्फ़ 5 या 7% वधंदी, जॾहिं मार्केट में महांगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, तालीम ऐं दवाउनि जा अघ वधीक तेज़ीअ सां वधंदा रहंदा, त अहिड़ी वाद मुलाज़मनि जे लाइ रिलीफ़ न पर अंगनि जो फरेब महसूसु थींदी। तारीख़ शायदि आहे त जॾहिं बि हुकूमतुनि वटि माली वसीलनि जी खोट थी, तॾहिं आम माण्हूअ जे खीसे ते ख़ामोश टैक्स विधो वियो। पेट्रोल महांगो थियो, ट्रांसपोर्ट महांगी थी, भाॼी, अटो, खंडु, दवाऊं ऐं तालीम सभु कुझु आवाम जे वस खां परे थींदो वियो। अॼु बि उहो ख़दशो मौजूदु आहे त जेकॾहिं आलमी इदारनि जूं शर्तूं सख़्त रहियूं त हुकूमत रिलीफ़ बदिरां रेवन्यू गॾु करण खे तरजीह ॾेई सघे थी। ज़माने जे तलख़ तजुर्बे मां एतिरो ज़रूरु चई सघिजे थो त पाकिस्तान जूं बजटूं घणो करे उमेद ऐं मायूसीअ जे विच वारी सरह ते जनम वठंदियूं आहिनि। मौजूदा निशानियुनि खे ॾिसंदे ईअं लॻे थो त हीअ बजट शायदि मुकमल तौरु अवामी या मुलाज़िम दोस्त न हुजे, पर हुकूमत कोशिशि कंदी त घटि में घटि एतिरो रिलीफ़ ज़रूरु ॾिए जो नाराज़गीअ जी बाहि वॾे तूफ़ान में तब्दील न थिए। बाक़ी हक़ीक़ी फ़ैसिलो हमेशह वांगुरु बाज़ारि, बिजलीअ जे बिल ऐं घर जो

0: हुयो हिन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दिना इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा।

0: जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आरआई 0307-359-2120।
1: खुशखबरी हानी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 ऐं 0242460100।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी
1: खुशखबरी।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा नेब मलीर में हजार एकड़ जमीन जी गैर कानूनी अलॉटमेंट जी जांच शुरू करे छी रेवेन्यू खाते का रिकॉर्ड तलब सिंध में मैट्रिक जा नतीजा 10 जुलाई इंटर जा 31 जुलाई तक जारी करने जो फैसलो सूबाई वजीर इस्माइल राहू की सदारत हेठ तालीमी बोर्ड जो इजलास एक करोड़ का वधिक इनाम रखल बदनाम धाड़ेल मेलो ते गाणी सूधो सठ डुहारी पुलिस वट पेश शिकारपुर पुलिस लाइन में सिलेंडर पॉलिसी तहत सठ का वधिक कचे जे डुहारी हथियार फिटा कया सिंध जे जेलन में गुंजाइश का वधिक कैदी वाड़ियल 14,128 जे गुंजाइश अंग 26,959 ते पहुंची वयो अज का सजे मुल्क में सख्त गर्मी हीट व्यू जो खतरो मौसमियात खाते आगाह कर छो सिंध में पानी खोट 40 सैकड़ो थी वही वाहन के फराहमी में 34 सैकड़ो तई कटौती स्पेशल रिपोर्ट में अवाम बुझी सकंदा सालियानी बजट अवामी मुफाद नेब कराची मलीर जिले में हजार एकड़ सरकारी जमीन की गैरकानूनी अलॉटमेंट वाले मामले की जांच शुरू कर छी है अगूणे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह बासर शख्स एजी मजीद खालिद यूसुफ जई अमाद दीन चाचड़ समेत बेन के खिलाफ जांच शुरू कदे रेवेन्यू खाते का रिकॉर्ड तलब कर वरतो है उन हवाले से वरतल जान मुताबिक कराची के जिले मलीर के वे पैमाने से गैरकानूनी जमीन की अलॉटमेंट कई वही है रेवेन्यू खाते तोड़े लैंड यूटिलाइजेशन खाते जहा कामोरा मुलविस उन्होंने खिलाफ़ का भी असरायती कार्रवाई वे अरसे का ना थी सकी नेब कराची पारा मलीर जिले में हजार एकड़ सरकारी जमीन के गैरकानूनी अलॉटमेंट कर जाली एंट्रीज रखने वाले मामले की जांच शुरू कर छी है उन सिलसिले में रेवेन्यू खाते के इख्तियार खत लिखो वो है बुधा वो है मलीर के तहलके मुराद मेमण में गैरकानूनी जमीन की अलॉटमेंट वे मामले की जांच शुरू कई वही है तालके मुराद मेमण के मुख्तियारकार के खत लिखी जाना वो है तो बुधा वे 117 एंट्रीज कें नालन से उन जमीन की अलॉटमेंट कदें थी कड़े नाफितरन उन जमीन की अलॉटमेंट कई है जमीन कड़े मानून के नाले से है उन जमीन की हाँ स्टेटस है समूर घुर्बल रिकॉर्ड तलब किया वो है हजार एकड़ सरकारी जमीन की गैरकानूनी अलॉटमेंट वाली लिस्ट भी रेवेन्यू खाते के मोकली वही उन मुताबिक मलीर जिले के देह रोड में 323 एकड़ अतहर अली नाले शख्स के अलॉट कर उन नाले से एंट्री रखने वाले मामले जो रिकॉर्ड डिठो वो सिंधु हुकूमत मैट्रिक इंटरमीडिएट के नतीजन के तारीखों को ऐलान कर छो है यूनिवर्सिटीज तालीमी बोर्ड के सूबाई वजीर इस्माइल राहू की सदारत हेठ सभी तालीमी बोर्डन जो इजलास थो जै दौरान सिंध में मैट्रिक इंटरमीडिएट के सालियानी इम्तिहान जो जायजो वरतो वो इस्माइल राहू चो तो सिंध के सभी डिवीजनों में मैट्रिक जहा नतीजा 10 जुलाई तई इंटरमीडिएट जहा नतीजा 31 जुलाई तई जारी कया वा नतीजा मुकर वक्त से जारी कया वन तो जी शागिर्दन के वक्त सुर दाखिला में सहूलत मिले इन चो तो तालीमी बोर्डन में शफाफियत मेरिट इम्तिहानी निज़ाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन सहकार फराहम किया वो इजलास दौरान वजीर के दिनल ब्रीफिंग में बुधा वो तालीमी बोर्ड नाए 11 जमायत जहा नतीजा 31 अगस्त तई जारी कर छी सिंधु हुकूमत के सिलेंडर पॉलिसी तहत कचे के 102 केसन में घुर्बल 1 करोड़ रुपया इनामी आफ्ता बदनाम डुहारी बेलो तेगाणी समेत 60 का घुर्बल खतरनाक डुहारियन पुलिस लाइन शिकारपुर में हथियार फिटा कर कानून आडो पेश थिया उन मौके से SSP शिकारपुर कलीम मलक प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे सिलेंडर कदर डुहारियन के मीडिया आडो पेश सिलेंडर पॉलिसी बाबत तफसीली ब्रीफिंग दिनी SSP कलीम मलक चो तो सिलेंडर कदड़ डुहारियन में 1 करोड़ रुपया इनामी आफ्ता बिलो तेगाणी 50 लख रुपया इनामी आफ्ता अलीगुल तेगाणी मंजूर जाफरी अलहयार नंदवाणी 40 लख रुपया इनामी आफ्ता अब्दुल रहमान तेगाणी 30 लख रुपया इनामी आफ्ता मोहरम तेगाणी जडे तो 20-20 लख रुपया इनामी आफ्ता वहीद सब्जोई मीर शर सुल्तान बिजाराणी बशीर भयो बिया केतराई घुर्बल डुहारी शामिल जिन खिलाफ़ कतुल अगवा फुर धाड़ा पुलिस मुकाबलन बेन संगीन नोयत के दोहन जहा केस दाखिल इन्हें सिंधु हुकूमत पारा शुरू कल सरेंडर पॉलिसी जहा मुस्बत नतीजा सामू अची रहा मुख्तलिफ़ केसन में घुर्बल डुहारियन के कानून जो आडो पेश थे जिले में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम है
संस्कलाफ़ दाख़िल केसन मूजिब कानूनी कार्रवाई जारी रहंदी ऐं खेन अदालत आरो पेश कयो वेंदो। दोहरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रखियूं वेंदियूं। हुन ॿुधायो त कुझु कबीलाई तकरारनि सबबि मुख़्तलिफ़ ज़ातियुनि सां तालुक़ु रखंदड़ कुझु घुरबल ॾोहारी अञा ताईं सरेंडर न करे सघिया आहिनि, जॾहिं त ईंदड़ फेज़ 3 में वधीक ॾोहारियुनि जे हथियार फिटा कया वेंदा। सिंध जे जेलनि में गुंजाइश खां वधीक 12,700 क़ैदी वाड़ियल, 14,128 जी गुंजाइश अंगु 26,959 ते पहुतो। रिपोर्ट मूजिबि कराची जी सेंट्रल जेल में 2400 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 7,985 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल हैदराबाद में 1527 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 3009 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल लाड़काणे में 650 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 963 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। वुमेन जेल सखर में 20 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 75 औरतूं क़ैद आहिनि। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 2200 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 5644 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल नारा हैदराबाद में 300 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 547 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शहीद बेनिंद्राबाद में 100 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 352 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। लाड़काणे डिस्ट्रिक्ट जेल में 150 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 449 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल दादूअ में 250 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 417 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल बदीन में 250 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, ऐं उते 319 क़ैदी मौजूदु आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर में 250 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, त उते 440 क़ैदी मौजूदु आहिनि। जंहिं ते डिस्ट्रिक्ट जेल नौशरफ़िरोज़ में 250 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, त उते 546 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। मजमूई तौर ते सिंध जे 23 जेलनि में 14,128 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 26,969 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में 438 औरतूं ऐं 312 ॿार क़ैदी आहिनि, जंहिं मां 88 औरतुनि ते ॾोहु साबित थी चुको आहे। हिकु औरत खे मौत जी सज़ा मिलियल आहे, जॾहिं त 368 औरतुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में क़ैद 312 ॿार क़ैदियुनि मां 8 ते ॾोहु साबित थी चुको आहे, जॾहिं त 303 क़ैदियुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध में पाणी खोट 40% खां वधीक थी वई आहे। ईंदड़ 10 ॾींहनि में 50% खां वधण जा इम्कान यकीनी बणिजी विया आहिनि। वावडा ऐं अरसा पारां डेमनि मां पाणी भरण जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। काल्ह मुल्क जा पाणी ज़खीरा 4 मिलियन एकड़ फुट ताईं कढिया विया। सिंध जे बैराजनि मां गुडू बैराज ते पाणी जी खोट 28%, सखर बैराज ते 38% ऐं कोटड़ी बैराज वटि 57% वधी वई आहे। सखर बैराज वटां कीर्थर केनाल में 51, राइस केनाल में 39, दादू केनाल में 83, नारा केनाल में 17, खैरपुर लिफ्ट 35, रोहिड़ी केनाल 34 ऐं खैरपुर वेस्ट केनाल में 44% खोट थी वई आहे। कोटड़ी बैराज वटि पाणी आमद 11,645 क्यूसिक आहे ऐं घुर्ज 26,900 आहे। कोटड़ीअ वटां कलेरी फीडर में 52, अक्रमवाह में 58, ओल्ड फुलेलीअ में 49 ऐं न्यू फुलेलीअ में 63% खोट थी वई आहे। गुडू बैराज ते BS फीडर में 49, पट फीडर में 14 ऐं घोटकी फीडर में 12% पाणी घुर्ज खां घटि आहे। CAG केनाल मां कट वधाए 16,500 क्यूसिक कई वई आहे ऐं HTP केनाल वसीले बि तौंसा बैराज मां 11,894 क्यूसिक पाणी खयो पियो वञे। काल मंगला डेम में पाणी आमद 43,102 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई ऐं कट 39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई। तरबेला डेम में पाणी आमद 1,28,400 क्यूसिक ऐं हेठां वहिकिरो 1,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। काल गुडू बैराज जो मथां वहिकिरो 75,002, सखर बैराज जो मथां वहिकिरो 50,620 ऐं कोटड़ी बैराज जो मथां वहिकिरो 11,645 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। अॼु खां सॼे मुल्क में सख़्तु गर्मी हीट वेव जो ख़तरो मौसमियात खाते आगाह करे छॾियो आहे। 7 जून खां 12 जून ताईं गर्मी जी लहर जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते अलर्ट जारी कयो आहे। अलर्ट मूजिबि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, चहलम, गुजरात, सियालकोट 8 जून खां 11 जून ताईं गर्मी जी लपेट में रहंदा। नारेवाल, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, छंग, टोपा, टेकसिंग, सरगोधा, मियांवाली, खुशाब, बखर में भी हीट वेव जो इम्कान आहे। अलर्ट मूजिबि लैया, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर पिण मुतासिर थींदा। मौसमियात खाते मूजिब गर्मी पद मामूल खां 4-6 डिग्री सेंटीग्रेड वधीक रहण जो इम्कान आहे ऐं 7-12 जून ताईं गर्मी पद 44-48 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो।
8-12 जून ताईं कराची में मौसम सख़्तु गर्म रहण जो इम्कान आहे ऐं गर्मी पदु 40-43 डिग्री सेंटीग्रेड जे विच में रहंदो। 12 जून ताईं सिंध ऐं बलोचिस्तान जे कुझु ज़िलनि में गर्मी पदु 48-51 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो, जॾहिं त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मैदानी इलाइक़नि में गर्मी पदु 41-46 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं वञी सघे थो। मौसमियात खाते शहरनि खे अपील कई आहे त गर्मी तेज़ हुजण सबबि पंहिंजे ॿारनि जो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु जे सरज़मीन खां वठी जबलनि जे माथिरियुनि ताईं जॾहिं बि बजट जी मौसम अचे थी, तॾहिं रुगो वज़ीर जा दफ़्तर या इक़्तदार जा ऐवान ई जाॻी नथा पवनि, पर हिकु मज़दूर जी चुल्ह, हिकु उस्ताद जी उमेद, हिकु क्लार्क जो खीसो, हिकु पेंशनर जो थकल निगाह ऐं हिकु ग़रीब माउ जो रधणो बि कंहिं अणॾिठल इंतज़ार में बीह रहंदो आहे। हर साल वांगुरु हिन साल बि क़ौम जे दिलि में उहो ई सवाल धड़की रहियो आहे त छा ईंदड़ बजट आवाम ऐं मुलाज़मनि जे लाइ आसानीअ जो पैगाम आणींदी या वरी सब्र जे सलेब ते लटकाइण वारो नओं फ़रमान साबित थींदो। पाकिस्तान जी मौजूदा इक़्तिसादी हालति कंहिं अहिड़े मुसाफ़िर वांगुरु आहे जेको कर्ज़नि जे बैठक में बीठो रहियो आहे। हिकु हथ में उमेद ऐं ॿिए हथ में कर्ज़नि जी ज़ंजीर, मुल्क अञा बि आलमी कर्ज़ु ॾींदड़ इदारनि जे निगरानीअ हेठि आहे। हुकूमत खे सख़्तु माली हदबंदियुनि अंदरि रहंदे बजट ठाहिणी पइजी रही आहे, जिते ख़र्च घटाइण, टैक्स वधाइण ऐं ख़सारो क़ाबू करणु बुनियादी शर्त बणियल आहे। हाणे सवाल उहो थो उभिरे त अहिड़े माहौल में अवामी मुफ़ाद वारी बजट केतिरी हद ताईं मुमकिन आहे। मुशाहिदे मूजिबि पाकिस्तान जी सियासी तारीख़ ॿुधाए थी त चूंडुनि खां परे बीठल हुकूमतूं घणो करे अहिड़ियूं बजटूं आणींदियूं आहिनि जिन में अवामी रिलीफ़ खां वधीक माली नज़्मो ज़ब्त खे तरजीह ॾिनी वेंदी आहे। सरकारी मुलाज़मनि बाबति सूरतहाल वधीक पेचीदा ॾिसण में अचे थी। हिकु पासे हुकूमती हल्क़नि में अहिड़ियूं तजवीज़ूं ज़ेरे गौर आहिनि जिन में 5% खां 10% ताईं एडहाक रिलीफ़ पघारुनि में मामूली वाध या कुझु अलाउंस में तब्दीली शामिल आहे, त ॿिए पासे अहिड़ियूं रिपोर्टूं आहिनि जिन मूजिबि

0: जी हुयो हिन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तई गुलाब खान भेण के दिदा इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।